0: UAE, Qatar, Muscat. Ultimately, from Muscat, I retired and then came and settled in Bangalore. So, but after my retirement, I chose another career. That is, I pursued medical alternate therapy in acupuncture and acutherapy, acupressure. I took master's diploma and then MD also in acupuncture, and then now I'm practicing in Satya Sai Hospital as a voluntary service. On weekly basis I go there and then practice at home also the same therapy, treating patients on voluntary service. This is my
1: Okay.
0: short yeah
1: Profile. Good. ग्रेट.
0: introduction. Yeah,
1: सो
0: sure. Yeah.
1: तो दोस्तों आपको पता चला कि एवी जयरमन सर एक्यूप्रेशर के थ्रू भी कई सारे लोगों की मदद कर रहे हैं. चलिए तो एवी सर, हम जिस बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारे जीवन में पूजा यानी कि भगवान से जुड़ने का बहुत सारे तरीके होते हैं और हम लोग उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी. किसी एक भगवान के बारे में बात ना करते हुए, ये जो पूरी विधा है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मेडिटेट करना, प्रेयर करना, भगवान के ध्यान में मग्न हो जाना, अपने आप को पीसफुल करना, इसको स्पिरिचुअलिटी अगर कहें, तो हमें थोड़ा अपने वर्ड्स में स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लेन कीजिए.
0: हाँ, एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड बोल सकते हैं. स्पिरिचुअलिटी बचपन में कुछ अलग मीनिंग होता है. रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी बेसिकली बचपन में हमको हमारे माता पिता हमको इंट्रोड्यूस करते हैं भगवान के श्लोक बोलने के लिए. सो दैट इज वेयर वी गेट इंट्रोड्यूस टू गॉड बेसिकली. तो मदर एंड फादर आर द फर्स्ट गुरुज हु टीच यू फ्यू श्लोकास एंड एंड इंट्रोड्यूस टू गॉड. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सुबह नाश्ते ना ना ना धो के भगवान के पास जाते हैं. बोलते हैं इसके सामने खड़ा हो जाओ हाथ इस करके. नो, यू स्टार्ट चैंटिंग, दे विल टीच यू फ्यू श्लोकास. दैट इज स्टिल एम्बेडेड इन योर ब्रेन. बचपन में जो सीखते हैं वो काफी हद तक रह जाते हैं ब्रेन. तो मम्मी की इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. तो आई रिमेम्बर गोइंग टू टेम्पल्स विद पेरेंट्स एंड देन पापा की थोड़ा गुजर गए मैं 6 साल में. तो मम्मी बिकेम माई फादर एंड मदर बेसिकली. सो आई वॉज ऑलवेज ट्रेवलिंग विथ माई मम्मी. तो मम्मी मुझे प्रोफेशन के लिए लेके जाती है. तो दैट वॉज लिटिल हाई हाई फॉर मी. उनके लिए ठीक होगा लेकिन जो आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर. तो स्वामी जी वहां बोलते थे सो हम बोलो वेन एवर यू डू एनीथिंग यू टेल सो. सोहम का संस्कृत मीनिंग इज आई एम दैट. सी आई एम गॉड बेसिकली. तो उसको संस्कृत में सोहम बोल देते हैं. तो वो बोलते हैं तो आप चलते टाइम सोहम बोलो, कान भरने टाइम बोल सोहम बोलो, घर में यू आर कुकिंग मदर को बोलते हैं. तो आई इवन यूज टू टीस माई मदर, अरे आप बोलते क्यों नहीं हो सोहम, रोड क्रॉस करने के टाइम भी सोहम बोलो. तो शी इज टू चाइड मी, अरे रोड क्रॉस करने नहीं बोलेगा तो कोई गाड़ी आके मार देगा मुझे. इज टू टीज देयर बट आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग दी डेप्थ ऑफ दैट स्टेटमेंट. एंड देन माई इम्प्लॉयर्स वॉज आई वॉज द यंगेस्ट फेलो ऑफ 5 सन्स एंड 1 सिस्टर. सो आई वॉज द यंगेस्ट एंड आई वॉज जस्ट 6 7 ईयर्स एंड शी इज टू रीड लॉट ऑफ

0: Adhyatmic text, you know, about all the saints. I used to just sleep in her lap, basically, just. And this went on into my subconscious mind. That is what is wonderful. I was not listening. But during sleep, it has gone subconscious mind. And all these stories I remember even now. That is the beauty of it. All those saints' life histories. So this has helped me a lot, you know, becoming religious, which helped me in my later life. Then that is, you know, spirituality ka first lessons. It was very useful in my life. Then college days mein, I got associated with a mission, with a religious mission, where they were teaching Bhagavad Gita. That was another great blessing. Bhagavad Gita or spirituality ke kaafi connections hain. Prayer actually is a, you know, it is antyatmik shuddhata bolte hain na. It is for purification of the mind. Initially, bachpan mein to prayer aise hi hota hai ki mujhe achhe marks milna hai. I want to be, you know, I want to get good marks. It starts like that, you know. And then prayer starts with the chanting of, you know, Om. Om jo syllable hai.
1: Right, sir.
0: Teen akshar ka A, O, N, M. And that really gives you the solace and, you know, peace in the mind. And something surprising when we go to temple is, we see the God standing in front of him. And we close our eyes. Why? We have come all the way to see the temple.
1: Correct.
0: Hum apne aap ko aank band kar dete hain. That is because we reflect God in our own conscience. We pray for the well-being of the family. It starts with ourselves, then family, then community. It goes on expanding. तो बचपन में सिर्फ हमको बोला जाता है अरे आंख बंद कर लो. इवन लिटिल बिट स्लाइटली आंख सड़क खोल के देखते हैं क्या होता है देखेंगे. सो बट लेटर ऑन व्हेन वी स्टार्ट स्टडीइंग और नोइंग अबाउट गॉड स्पिरिचुअलिटी ऑन स्पिरिचुअल टेक्स्ट लाइक भगवद गीता. And then we get to know what is the depth of the whole thing. See, our body, our jism, mind, intellect, buddhi, man, buddhi. And then we are, when we chant Om sincerely and, you know, closing our eyes, you actually reflect God in your own antaratma.
1: राइट सर. यहाँ पर एक और बात भी आ जाती है सर. आप बोल रहे थे तो मेरे को ख्याल आया, आपने बोला मंदिर में जाके हम आंखें बंद कर लेते हैं और वी विश फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीबॉडी. पर मुझे लगता है मंदिर में हम गए हैं, ऐसा ही मेरे दिल में विचार आया, थॉट आया सर, मंदिर गए हैं, भगवान के दर्शन करने गए हैं, तो हम आंखें खोल के उनका दर्शन क्यों नहीं करते, हम आंखें क्यों बंद कर लेते हैं, जबकि हम गए वहां पर उनका दर्शन करने के लिए ही तो हैं. तो हमें भर भर के उनको देखना चाहिए, उनकी मूर्ति को प्यार से सराहना चाहिए कि क्या है, कैसे हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने पावरफुल हैं. वी शुड कीप ऑन डूइंग दैट इंस्टेड वी जस्ट क्लोज अवर आईज. सो मुझे समझ में नहीं आया.
0: दैट इज द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग, यू नो, गॉड इज गाइडिंग यू टू लुक एट योरसेल्फ. तुम अपने अंतरात्मा को देखें.
1: अरे तो सर वो घर पे भी तो आके कर सकते हैं, उधर ही क्यों?
0: क्योंकि बाहर जो है, बाहर जो, यस, यू आर लुकिंग एट गॉड, यू आर लुकिंग एट गॉड एंड आपने देख लिया काफी. देन व्हाट इज नेक्स्ट, यू नो, देन यू कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड विद द सराउंडिंग्स, यू नो.
1: ओके.
0: जो आजू बाजू में को इधर उधर हिल रहे हैं, चल रहे हैं. So by closing your eyes, you are able to concentrate on the God and your prayers, and then slowly you are looking inwards.
1: All right.
0: क्योंकि बाहर की दुनिया इतना हलचल मची हुई है, तो अब अंदर की देख, दैट इज व्हाट दे ऑल द स्क्रिप्चर्स से, यू नो, लुक एट इनसाइड, टर्न योर डायरेक्शन इनसाइड. बिकॉज बाहर की दुनिया तो मेटेरियलिस्टिक है, इट इज नॉट गिविंग यू फुल सोलेस. यस, इट गिव्स यू मोर डिजायर्स रादर देन यू नो. एंड देन मन अशांत हो जाते हैं, अरे हमको वो चाहिए, ये चाहिए. वेयर एज व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट इनसाइड, दैट पीस, स्पेशली व्हेन यू चैंट ओम. वी जनरली हैव मेडिटेशन सेशन इन द मॉर्निंग, सो उसमें वही होते हैं कि आप चैंटिंग करो, ओम ओम रेवरबरेट करो, चैंट लाउडली, क्लोजिंग योर आईज. दिस इज व्हाट गिव्स यू सोलेस, पीस ऑफ माइंड.
1: All right.
0: Ultimately, we want to be happy, is it not? We want to be happy.
1: Absolutely.
0: Yes. Happiness is not outside. That's what the scriptures say. Happiness is inside.
1: Okay, I get it.
0: Yeah.
1: तो दोस्तों, जाहिर से बात है, हमको मंदिर में जाकर आंख बंद करनी इसलिए होती है कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो भी ईश्वर का स्वरूप हमने देखा वो हमारी आंखों में बसा रहे. Correct. तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक भजन का आनंद लें, फिर वापस आते हैं एवी सर के पास.

0: जयरमन सर, प्लीज मुझे बताइए कि स्पिरिचुअलिटी के हम आज के डेट में फायदे क्या ले सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल बातें बहुत हैं, सब है, बहुत अच्छी बात है, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा पढ़ा दिया, पर उसका फायदा क्या? आज के जमाने में लोग बेनिफिट में इंटरेस्टेड हैं। सो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, मेडिटेशन, गीता, इनके बेनिफिट्स बताइए, बेनिफिट्स, टेंजिबल बेनिफिट्स, टेंजिबल, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड है कि सर मैं एक घंटा लगाऊंगा मेडिटेशन।
1: नहीं, मेडिटेशन कैन बी वेरी शॉर्ट ऑल्सो, बट सुबह सुबह उठ के आपको मेडिटेट करना है।
0: उसका फायदा क्या सर?
1: मेडिटेशन फायदा इसीलिए है कि अंतकरण शुद्धि हो जाते हैं। सी प्रोबेबली व्हेन यू सिट एंड मेडिटेशन इज नॉट वेरी इजी बेसिकली, बिकॉज द मोमेंट यू क्लोज योर आईज आपके मन में हजार विचार आते हैं। इट्स अ फ्लो ऑफ थॉट्स, ए फ्लड ऑफ थॉट्स। आप सरप्राइज हो जाएंगे, एक मिनट में इट विल बी थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स फ्लोइंग इन द माइंड द मोमेंट यू वॉन्ट टू सिट एंड मेडिटेट, लेट अस से। सो इसीलिए हम ओम चैंटिंग चालू करते हैं। ओम चैंटिंग वी डू अराउंड वॉट एवर नंबर ऑफ टाइम्स, 20-21 टाइम्स, एंड देन द मोमेंट यू फिनिश दिस ओम चैंटिंग द माइंड इज लिटिल रेस्टलेस, इट द फ्लो ऑफ थॉट्स स्टार्ट, यू नो, हम कल क्या करना है, आज क्या करना है, अभी जाके पढ़ना है, ये करना है। बट यू बिकम एन ऑब्जर्वर, यू ऑब्जर्व द थॉट्स, डोंट ब्लॉक द थॉट्स, लेट द थॉट्स फ्लो, बट यू बिकम एन ऑब्जर्वर, यू डिटैच यूर सेल्फ फ्रॉम दैट थॉट्स, एंड इट इज लाइक यू नो, इट इज लाइक यू नो हाउ यू आर स्टैंडिंग इन ए बैंक्स ऑफ द रिवर and you are observing the river flowing, you are not a part of the river, but you are observing the flow of river, standing on the banks as a observer. This is what is required. When you start observing in the flow of thoughts, the thought flow starts reducing, and kam hote hote hote hote thoughts kam ho jayenge. Then you still keep observing, and that peace, inner peace of mind. So the scriptures or the spirituality or the masters, the gurus, they are only stressing this, that thoughts ko kam karo, or once the thought becomes zero, which is a very very difficult situation. The thoughtlessness, you observe that silence. The silence, you try to extend that silence, you know, where there are no thoughts. It is difficult to practice. I really, for the youth especially, because they are hyper now. They are bombarded with all these social media, mobile, laptop, especially these artificial intelligence, and people in the IT, they are glued to this laptop for hours together. It is difficult, but systematic practice can be done. The best time is early morning, whatever time is possible, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, when the atmosphere is quiet, you sit in a quiet corner and do this meditation. There are methods, there are some methods which we follow also. You keep a jyoti, you know, you can light a lamp and you observe that lamp with devotion, and slowly that lamp, you take the lamp, the jyoti, into your body, you know, take it into your body, slowly take that jyoti mentally to every part of your body. That's called the body relaxation. ये ज्योति को हम पूरे बदन में एक एक अंग, एक एक पार्ट्स को ये करते हुए, दिस ज्योति इज टेकन टू दैट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, एंड दैट पार्ट बिकम्स रिलैक्स्ड, एंड देन ऑब्जर्व द साइलेंस। दिस इज पॉसिबल, बट सिस्टमैटिक ट्रेनिंग systematic effort is required by the present youth to make them more peaceful and handle the situation more effectively.
0: तो आइए दोस्तों फिर एक भजन को सुनते हैं और विचार करते हैं जो अभी जयरमन सर ने हमें बताया.

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। यार, आपने कभी सोचा है कि एक गाना सिर्फ 2-3 साजों में ही इतना खूबसूरत क्यों लगता है? उसमें बारिश की बूंदें भी सुनाई देती है, खामोशी भी महसूस होती है, और एक आवाज सीधा दिल के किसी पुराने से कमरे का दरवाजा खोल देती है। और सबसे अजीब बात, कभी कभी हम गाना तो याद रखते हैं, गायक को याद रखते हैं, शायरी याद रखते हैं, लेकिन जिस इंसान ने उस गाने की पूरी दुनिया बनाई उसका नाम भूल जाते हैं। आज की हमारी बातें इधर की उधर की में हम ऐसे ही एक भूले बिसरे नाम को याद करेंगे, एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर को जिसके पास बहुत बड़े बजट्स नहीं थे, बड़ा ऑर्केस्ट्रा नहीं था, बड़े दावे नहीं थे, लेकिन म्यूजिक के लिए बहुत बड़ा दिल था। नाम था कानू रॉय। जी हाँ, कानू रॉय। दोस्तों, मैं हूँ आपके तरानों की हम सफर, आपकी तनुषा, और आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील पे अपना फेवरेट शो बातें इधर की और उधर की। कानू रॉय की कहानी थोड़ी अजीब है, और शायद इसी वजह से वो बहुत खूबसूरत भी है। 1912 में कैलकटा में जन्मे कानू रॉय एक सपना लेकर बॉम्बे आए थे, जैसे कि हम सब जाते हैं कि नहीं। जी हाँ, तो कानू रॉय के सपने पे वापस आते हैं। उनका सपना था प्लेबैक सिंगर बनने का, लेकिन जिंदगी ने कहा, भाई साहब, सिंगिंग का ऑडिशन बाद में लेंगे, पहले स्ट्रगल का कोर्स करो। और कानू रॉय ने वो कोर्स पूरे मन से किया। उन्होंने जिंदगी में छोटे बड़े कई काम किए, ड्राइवर भी रहे, रिपेयर वर्क भी किया, वेडिंग्स में काम भी किया, यहां तक कि हावड़ा ब्रिज के कंस्ट्रक्शन और रिपेयर से जुड़े कामों में भी अपना पसीना बहाया। सोचिए, एक तरफ था म्यूजिक का सपना और दूसरी तरफ हाथ में मेहनत के औजार। लेकिन शायद असली कलाकार वही होता है जिसका सपना उसके हालात से बहुत बड़ा हो जाता है। दोस्तों, कानू रॉय इप्टा से जुड़े, और वहीं उनकी मुलाकात हुई एक बहुत बड़े नाम से, सलिल चौधरी जी। जी हाँ, सलिल दा ने उनकी क्षमता पहचानी, और शायद कानू रॉय को भी समझ आ गया कि अगर आवाज प्लेबैक सिंगर की नहीं बन पाई तो क्यों ना वो आवाजों के पीछे की दुनिया बनाए। और यहीं से उनका सफर शुरू हुआ एक म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। अब जरा एक सवाल पूछिए, खुद से पूछिए, मुझसे नहीं। आप अपना फेवरेट गाना सुनते हैं तो सबसे पहले आपके मन में किसका नाम आता है? सिंगर, ऑफ कोर्स, किशोर कुमार जी, लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी साहब, आशा भोसले जी, गीता दत्त मैम, या फिर लिरिसिस्ट का, साहिर जी, गुलजार साहब, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर शायद ही आपके दिमाग में आता है।
कभी कभी हम गाना इतना सुन लेते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर का नाम जानना जरूरी ही नहीं समझते। और कानू रॉय की सबसे बड़ी कहानी शायद यही है। उन्होंने ऐसे गाने बनाए जो लोगों ने याद किए, मगर उनका नाम बहुत पीछे छूट गया। 1966 में बासु भट्टाचार्य की फिल्म उसकी कहानी से कानू रॉय को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला। बजट बहुत बड़ा नहीं था, ऑफ कोर्स बासु भट्टाचार्य जी की फिल्म है आखिर। आज के जमाने में हम कहेंगे प्रोडक्शन बजट टाइट है, उस जमाने में शायद सिंपली कहा जाता था भाई पैसे नहीं है, बस एक सपना है, सिर्फ कुछ म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्डिंग करनी थी। लेकिन कानू रॉय ने रिसोर्सेस की कमी को क्रिएटिविटी की कमी नहीं बनने दिया। यही तो उस जमाने के लोगों की खासियत थी दोस्तों, उनके सपने बहुत बड़े थे चाहे जेबें बहुत छोटी रही हों। और फिर सामने आए कैफी आजमी के अल्फाज और एक ऐसी आवाज जिसे सुनते ही दिल अपने आप धीमा पड़ जाता है, गीता दत्त जी। कानू रॉय और गीता दत्त जी का रिश्ता बहुत खास था। लोगों ने कभी कभी उन्हें गलती से भाई बहन तक समझ लिया, लेकिन उनका रिश्ता खून का नहीं, संगीत का था। और कभी कभी संगीत के रिश्ते खून के रिश्ते से बहुत गहरे हो जाते हैं। फिर आया 1971, फिल्म थी अनुभव, और गीता दत्त जी की आवाज ने एक बार फिर कानू रॉय जी के सुरों को एक अलग ही रूप दे दिया। सोचिए आज हम गाने को बड़ा बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, बड़े से बड़ा ऑर्केस्ट्रा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लेयर्स, इफेक्ट्स, टेक्नोलॉजी। और कानू रॉय, उन्होंने कभी कभी कम को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जी हाँ, जिसको आज हम शायद पॉप कल्चर में जानते हैं लेस इज मोर के नाम से। उस जमाने में कानू रॉय जी ने उस लेस इज मोर को अपने म्यूजिक में जिया। बारिश की बूंदें, एक हल्का सा सांस और गीता दत्त जी की मखमली आवाज, बस। और फिर जो बना वो सिर्फ गाना नहीं रहा, वो माहौल बन गया, वो याद बन गया, वो एहसास बन गया। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ गाने हम सुनते नहीं हैं, बस दिल के बहुत अंदर से महसूस करते हैं। आंखें बंद करते ही कोई पुरानी सी शाम याद आ जाती है, किसी की आवाज याद आ जाती है, कोई पुराना कमरा, खिड़की पर गिरती बारिश या किसी का इंतजार। और कानू रॉय जी का म्यूजिक इसी तरह का था। वो चीखता नहीं था, वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता था, वो बस धीरे से आता था और दिल में अपनी जगह बना लेता था। 1973 में आई अभिष्कार और कानू रॉय ने मन्ना डे जी जैसे महान गायक की आवाज का इस्तेमाल किया। गाना था हंसने की चाहत ने कितना मुझे रुलाया है, नाम ही देखिए, हंसने की चाहत और रुला देने वाली जिंदगी। कानू रॉय जी का म्यूजिक भी कुछ ऐसा ही था, बहुत शोर नहीं लेकिन अंदर तक पहुंचने वाली बात, जी हाँ आपकी रूह में उतरने वाली बात। फिर 1975 में आई गृह प्रवेश, जगजीत सिंह और चित्रा जी की आवाजों का इस्तेमाल किया गया और एक पुरानी रचना बाबुल मोरा नेहार छूटो जाए। पुरानी चीज को नया बना देना आसान नहीं होता, उसमें ना तो पुरानेपन को पूरी तरह छोड़ा जा सकता है, ना नएपन के चक्कर में उसकी रूह खत्म की जा सकती है। कानू रॉय ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती और गहराई से समझा
और इसीलिए उनका म्यूजिक आज भी सुनने पर एक अजीब सा अपनापन देता है। और एक बात जो मुझे कानू रॉय की कहानी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, उन्होंने सारी जिंदगी बहुत बड़ा नाम बनाने के लिए भागदौड़ नहीं की। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, ना हर जगह अपना नाम लिखने की कोशिश। वो म्यूजिक बनाते रहे और जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। 1981 में कैंसर से लड़ते हुए कानू रॉय ने इस दुनिया को छोड़ दिया, बहुत शोर शराबे के बिना, और शायद यही सबसे दुख की बात थी कि जिस इंसान ने इतने लोगों के दिलों में सुर भर दिए, उसके जाने पर दुनिया में उतना शोर ही नहीं हुआ जितना कि वो डिजर्व करते थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनके जाने के बाद उनका आखिरी एल्बम मयूरी सामने आया और उसमें उनके म्यूजिक को नूतन जी ने भी संभाला और सजाया। सोचिए, एक कलाकार चला गया लेकिन उसकी धुन अभी तक सफर कर रही है। तो आज की बातें इधर की उधर की में एक बहुत छोटा सा सवाल आपके लिए। अगर किसी गाने का सिंगर याद हो, लिरिक्स याद हो, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर का नाम ना पता हो, तो क्या हम गाने की कहानी का आधा हिस्सा भूल रहे हैं? और एक और सवाल, क्या कलाकार की सफलता सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी से मापी जाती है, या फिर उस एहसास से जो उसके बनाए हुए म्यूजिक ने एक इंसान के दिल में पैदा किए? कानू रॉय शायद हर घर का एक जाना पहचाना नाम नहीं है, लेकिन उनके बनाए हुए सुर शायद हमारे घरों में हमसे बहुत पहले पहुंच चुके थे। और यही तो है कला की अजीब सी खूबसूरती। कलाकार चला जाता है लेकिन उसकी कला कभी नहीं रुकती। तो अगली बार जब आप कोई पुराना गीत चलाएं, सिर्फ ये मत पूछेगा ये किसने गाया, एक बार ये भी पूछना इस खूबसूरत एहसास को बनाया किसने था। हो सकता है उसके जवाब में आपको कानू रॉय जैसे और नाम मिल जाएं, जो दुनिया की नजरों से भले ही दूर रहे मगर हमारी यादों के म्यूजिक प्लेयर में अब भी चुपचाप बज रहे हैं। मैं हूं आपके तरानों की हम सफर, आपकी आरजे तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर। अगली बार जब कोई भूला बिसरा गीत मिले, मेरी ये बात याद कीजिएगा और उसे सिर्फ सुनिएगा नहीं, उसके पीछे छुपे हुए कलाकार को याद कीजिएगा, क्योंकि कुछ नाम मशहूर होने के लिए नहीं, याद रखे जाने के लिए बने होते हैं। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: संता ने कहा, हे भाई बंता, कहाँ हो? बंता ने कहा, भूख लग रही थी भाई, होटल में हूँ, खाना खा रहा हूँ। बंता ने फिर पूछा, अच्छा तू कहाँ है संते? संता ने कहा, लंगर की लाइन में खड़ा हूँ, तुम्हारे पीछे ही हूँ, आगे बढ़ो तो जरा खीर मेरे लिए भी ले लेना।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। और आज की बात थोड़ी आसमानी है, थोड़ी प्लैनेट्स की है और थोड़ी सी जमीन से जुड़ी हुई है। आज बात होगी प्लैनेट्स की। सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न। नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कुंडली, ग्रह, ग्रहण, राशियां, पंडित जी मेरी शादी कब होगी, पंडित जी मेरी जॉब कब लगेगी, पंडित जी पैसा कब आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, पंडित जी ये शनि मुझसे इतना नाराज क्यों है। लेकिन आज का थॉट थोड़ा अलग है। एक सिंपल सी लाइन है, इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द प्लैनेट्स, फिक्स योरसेल्फ। मतलब हर बार आसमान में प्रॉब्लम नहीं ढूंढिए, कभी कभी जरा अपने अंदर भी देखिए। एक बात पहले ही क्लियर कर रही हूं, एस्ट्रोलॉजी को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग बिलीव्स हैं। साइंस और ज्योतिष एक ही चीज नहीं है, और आज हम इसे प्रिडिक्शन के रूप में नहीं, एक सोच, एक परंपरा और एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के तरीके से देखेंगे। क्योंकि अगर प्लैनेट्स के नाम से हमें अपनी आदतों की तरफ देखने का मौका मिल रहा है तो इतनी बुरी बात भी नहीं है, है ना? चलिए शुरू करते हैं वीनस से। वीनस यानी शुक्र। वीनस को पारंपरिक ज्योतिष में प्रेम, सुंदरता, सुख और संबंधों से जोड़ा जाता है। एक सिंपल मैसेज है, अच्छे और साफ कपड़े पहनो, अपने आप को संभालो। अब सुनने में लगता है बस वीनस को खुश करने के लिए वार्डरोब चेंज करनी होगी, लेकिन जरा दूसरे एंगल से देखिए, हम सबके साथ होता है। ऑफिस जाना हो तो शर्ट आयरन, शादी में जाना हो तो परफ्यूम, इंटरव्यू में जाना हो तो शूज पॉलिश, लेकिन घर में पुरानी फटोड़ी टी शर्ट, एक चप्पल इधर एक उधर, और बाल कह रहे हैं हम आजाद हैं। पॉइंट कपड़ों का है ही नहीं, पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव का। अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, कभी कभी खुद के लिए भी तैयार होके देखिए। सुबह नहा कर, साफ कपड़े पहनकर, बाल ठीक करके जब आप मिरर में खुद को देखेंगे तो दिमाग को एक छोटा सा सिग्नल मिलता है, भाई आज हम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीनस का लेसन अगर प्रैक्टिकल बना दें तो बस इतना सा है, खुद की केयर कीजिए। अब आते हैं सन यानी सूर्य पर। हर वक्त सबके लिए अवेलेबल मत रहिए, क्या बात है। इस लाइन को तो व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाना चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जो फोन पर आर यू फ्री ये देखते ही झट से बोल पड़ते हैं हाँ बोलो, और फिर सामने वाला बोलता है एक छोटा सा काम था, और वो छोटा सा काम आपकी पूरी शाम खा जाता है। कभी नोटिस किया है, जो इंसान हर वक्त अवेलेबल होता है लोग अक्सर उसके वक्त की वैल्यू कम कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश बन जाइए, मदद करना बंद मत करिए, बिल्कुल नहीं, बस एक हेल्दी बाउंड्री रखिए। हर कॉल तुरंत उठाना जरूरी नहीं है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई भी जरूरी नहीं है, हर प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना देना भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। कभी कभी अभी पॉसिबल नहीं है, बस एक छोटा सा बट पूरा सा सेंटेंस जरूरी होता है, और बिल्कुल वैलिड सेंटेंस है ये। तो सूर्य का लेसन, रोशनी दीजिए लेकिन खुद को जला कर नहीं। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट की, मून यानी चंद्र की। हर किसी से इमोशनली अटैच्ड मत रहिए। अब ये लाइन सिंपल है लेकिन इसे फॉलो करना, उफ, हम तो ऑनलाइन किसी से 3 दिन बात कर लें और चौथे दिन वो गुड मॉर्निंग ना भेजे तो हम सारे सिनेरियोस इमेजिन कर लेते हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है, उसने मेरा मैसेज देखा क्यों नहीं,
1: लास्ट सीन तो कल का है, रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या वो मुझसे नाराज है?
0: और फिर दिमाग नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा स्टोरीज बना लेता है उसे एक सेकंड में। लेकिन इमोशनल अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि इमोशंस ही मत रखिए, फील कीजिए, प्यार कीजिए, केयर भी कीजिए, लेकिन अपनी पूरी खुशी किसी एक इंसान के बिहेवियर के हवाले मत कीजिए। किसी का रिप्लाई आए तो खुश, रिप्लाई नहीं आए तो दुखी। किसी ने तारीफ की तो कॉन्फिडेंस हाई, और किसी ने इग्नोर किया तो कॉन्फिडेंस जीरो। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल रखिए, रिमोट कंट्रोल नहीं। अपने पास दिल रखिए, एक रिमोट कंट्रोल नहीं। अपने इमोशंस की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अब आते हैं मार्स यानी मंगल की। कीप योर बॉडी फिट। जी हाँ, इसमें तो प्लैनेट से ज्यादा डॉक्टर साहब अग्री करेंगे। हम सबके पास एक यूनिवर्सल एक्सक्यूज होता है, अभी टाइम नहीं है, अभी शेड्यूल टाइट है, अभी मन नहीं कर रहा, कल से एक्सरसाइज शुरू। कल आता है, फिर कहते हैं मंडे से, मंडे भी आ जाता है, फिर कहते हैं नेक्स्ट मंडे से प्रॉपर, और एक दिन फिर से न्यू ईयर आ जाता है। इस साल तो पक्का। बॉडी को फिट रखना सिर्फ लुक्स के लिए नहीं है दोस्तों, आपका मूड, आपकी एनर्जी, स्लीप, कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपके मूवमेंट का असर है। जिम जाना जरूरी नहीं है, वॉक कर लीजिए, सीढ़ियां चढ़ लीजिए, थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, डांस कर लीजिए, घर की सफाई करते हुए भी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो मंगल का प्रैक्टिकल लेसन, बॉडी को इग्नोर करके माइंड को स्ट्रांग रखना मुश्किल है। अब बात करते हैं मर्क्यूरी की और इसका मैसेज। लोगों के बीच जरूरत से ज्यादा मत बोलो, ये तो बहुत डेंजरस एडवाइस है, खास करके उन लोगों के लिए जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह 6 बजे एक्टिव हो जाते हैं। कभी कभी हम बोलते बहुत हैं लेकिन सुनते तो भाई बिल्कुल नहीं। हर बात में हमारा ओपिनियन है, हर डिस्कशन में हमारी एंट्री है, हर कहानी में अपना एग्जाम्पल है। इससे ज्यादा इरिटेटिंग और कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी दोस्तों। किसी ने कहा मुझे कल बहुत थकान थी, और हम झट से कह देते हैं अरे मुझे भी 2017 में बहुत थकान थी। और फिर उनकी थकान की कहानी गई काम से और आपकी ऑटोबायोग्राफी शुरू। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी कम्युनिकेशन है। कभी सामने वाले को पूरा बोलने दीजिए, सेंटेंस खत्म करने दीजिए। हर साइलेंस को वर्ड से भरना जरूरी नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर बात बोलना भी जरूरी नहीं है। कुछ बातें सोचने के लिए होती हैं, कुछ बातें सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, और कुछ बातें बिल्कुल नहीं बोलने के लिए होती हैं। कम नहीं बोलना लेकिन समझ कर बोलना है, जरूरत पे बोलना है। अब आते हैं जुपिटर पर, एक और फेवरेट प्लैनेट। हर किसी को फ्री एडवाइस मत दीजिए। इंडिया में इस एडवाइस की सबसे ज्यादा जरूरत शायद हम सबको है। किसी की शादी नहीं हुई, एडवाइस, शादी हो गई, एडवाइस, बच्चा हुआ, एडवाइस, बच्चा नहीं हुआ, एडवाइस, जॉब चेंज की, एडवाइस, जॉब चेंज नहीं की, उसकी भी एडवाइस, और सबसे खास बात, एडवाइस मांगी भी नहीं गई होती है, फिर भी हम बोलते हैं मैं तुम्हारी जगह होता ना। भाई तुम मेरी जगह हो ही नहीं। हर इंसान की सिचुएशन अलग है, सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, एक्सपीरियंसेस अलग हैं, जो उनके पर्सपेक्टिव्स, उनके डिसीजंस को शेप करते हैं। कभी कभी सामने वाले को सल्यूशन नहीं, सिर्फ एक एक्टिव लिसनर चाहिए। इसीलिए नेक्स्ट टाइम कोई अपनी प्रॉब्लम बताए तो तुरंत मेरे हिसाब से मत शुरू कीजिए, पहले पूछिए
1: तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बस सुनूं या तुम्हें मेरी राय भी चाहिए? कितनी सिंपल लाइन है और कितने आर्गुमेंट्स बचा सकती है। और फाइनली सैटर्न, शनि, ओ माय गॉड, बोलते ही डर लग रहा है, बट इसका मैसेज बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, मेंटेन डिसिप्लिन इन लाइफ। अब यहां कोई शॉर्टकट नहीं है। शनि जी का लेसन बहुत सिंपल है, कड़क है, बट बहुत डिफिकल्ट है मानना। एक रूटीन, मेहनत, सबर, कंसिस्टेंसी, हम सब चाहते हैं कि रिजल्ट फ्राइडे को, मेहनत मंडे को भी नहीं करनी, वेट कम हो लेकिन समोसा भी चाहिए, पैसे बढ़े लेकिन बजट बनाना बोरिंग लगता है, बुक लिखनी है लेकिन फोन छोड़ना मुश्किल है, हेल्दी रहना है लेकिन रात को 2 बजे तक रील्स भी चलानी है। लाइफ से हम कह रहे हैं रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट प्लीज, और लाइफ पूछती है, इनफैक्ट सैटर्न पूछता है, एफर्ट एफर्ट एफर्ट एफर्ट, और हम सीन सीन सीन सीन करके आगे बढ़ते जाते हैं, जीवन निकलता जाता है और शनि आपके पीछे पीछे चलता जाता है आपको लेसन्स देता हुआ। डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है जो जरूरी है वो करो, और तभी करो जब उसका समय है, चाहे आपका मन हो या नहीं। तो दोस्तों, वीनस ने कहा खुद का ख्याल रखो, सूर्य ने कहा हर वक्त अवेलेबल मत रहो, मून ने कहा हर किसी को अपनी दुनिया मत बनाओ, मार्स ने कहा बॉडी को फिट रखो, मर्क्यूरी ने कहा जरूरत से ज्यादा मत बोलो, जुपिटर ने कहा हर किसी को फ्री में एडवाइस मत दो, और सैटर्न ने कहा डिसिप्लिन रखो। अब एक बार सोचिए इनमें से सबसे मुश्किल कौन सा है? खुद का ख्याल रखना, बाउंड्रीज बनाना, इमोशंस को संभालना, एक्सरसाइज करना, कम बोलना, एडवाइस कम देना, या डिसिप्लिन? शायद प्लैनेट कोई भी हो, असली काम तो हमारा है दोस्तों, क्योंकि अगर हम हर प्रॉब्लम का रीजन आसमान में ढूंढते रहेंगे तो जमीन पर जो चीजें हम बदल सकते हैं वो वैसे ही रह जाएंगी। अगली बार जब कोई कहे तुम्हारी कुंडली में इस प्लैनेट की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, आप एक बार खुद से पूछना मेरी आदतों में कहां प्रॉब्लम है, और उसे ठीक करने की कोशिश करना। प्लैनेट्स को हम कंट्रोल करें या ना करें, लेकिन हमारी आदतें अपनी हैं, अपनी जुबान है, अपनी बाउंड्रीज हैं, अपना रूटीन है, अपनी बॉडी है, अपना बिहेवियर है, इन पर तो बिल्कुल काम किया जा सकता है, और यही सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी है आपके प्लैनेट्स के लिए। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। याद रखिए, आसमान को देखना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी अपने पैरों के नीचे की जमीन भी देख लीजिए। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, कम उलझिए, थोड़ा मुस्कुराइए, और हाँ, फ्री एडवाइस देने से पहले आज की बातें इधर की उधर की याद कर लीजिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, अच्छा बच्चों ये बताओ कि सेमेस्टर सिस्टम का क्या फायदा है? एक बच्चे ने कहा, फायदा तो पता नहीं, लेकिन साल में दो बार बेइज्जती जरूर हो जाती है।

अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताएं आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप कौन सा है, तो जवाब क्या होगा? मम्मा, पापा, कोई दोस्त, कोई लाइफ पार्टनर, या कोई मेंटर, या फिर आपका खुद से रिश्ता? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों इंसान नहीं है, एक है अर्थ, जी हाँ हमारी पृथ्वी, और दूसरा जुपिटर, जी हाँ गुरु प्लैनेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं आज की ये एकदम ताजा बातें इधर की उधर की। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम की दुनिया बहुत अजीब है और उस दुनिया में भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, बस इनमें व्हाट्सएप मैसेजेस एक्सचेंज नहीं होते, ना कोई गुड मॉर्निंग, ना लास्ट सीन जोन। अच्छी बात है ना, काश हमारे भी ऐसे ही होते। खैर, अर्थ और जुपिटर लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स से एक ही सोलर सिस्टम का हिस्सा है, और जुपिटर सिर्फ बड़ा नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जी हाँ, सबसे बड़ा, इतना बड़ा कि उसके अंदर लगभग 1300 अर्थ के बराबर वॉल्यूम आ सकता है, और इसीलिए हमारे लिए जुपिटर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने कभी रात में आसमान को देखा है? कितनी शांत लगती है वो दुनिया, है ना? तारे हैं, ग्रह हैं, चांद है, सब कुछ बिल्कुल सुंदर है। लेकिन असल में स्पेस बहुत शांत जगह नहीं है, वहां हर वक्त कुछ ना कुछ घूम रहा है, और सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर में ये सब और भी ज्यादा था। अब यहाँ जुपिटर का रोल और इंटरेस्टिंग हो जाता है। जुपिटर का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी ग्रेविटी भी बहुत पावरफुल है, और उसकी ग्रेविटी कई एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की मूवमेंट को प्रभावित कर सकती है, कभी किसी ऑब्जेक्ट को दूसरी डायरेक्शन में भेज सकती है, कभी उसकी ऑर्बिट बदल सकती है, और कभी वो ऑब्जेक्ट जुपिटर से टकरा भी सकता है। यानी जुपिटर सोलर सिस्टम में एक बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल प्लेयर है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, ये कहना कि जुपिटर अर्थ को हर एस्ट्रॉइड से बचाता है, साइंटिफिकली तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा। कभी जुपिटर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से दूर करने में मदद कर सकता है, लेकिन कभी उसकी ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ भेज भी सकती है। तो जुपिटर कोई कॉस्मिक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल है कि साइंटिस्ट सोलर सिस्टम में उसके डायनेमिक्स के रोल को बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं, और इसी वजह से जुपिटर देखते हुए एक बहुत खूबसूरत मेटाफर सामने आता है, प्रोटेक्शन का। जी हाँ, प्रोटेक्शन का। अब जरा इसे ह्यूमन लाइफ से जोड़िए। हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर प्रॉब्लम को हमारे लिए सॉल्व नहीं करते, वो हमारे लिए एग्जाम खुद नहीं दे सकते, वो हमारे लिए जॉब इंटरव्यू भी नहीं दे सकते, हमारी शादी के डिसीजंस नहीं ले सकते, हमारी गलतियों को हमसे छीन नहीं सकते। लेकिन लेकिन लेकिन जब हम गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो वो एक बात कहते हैं, रुक। जब हम किसी गलत इंसान के पीछे भाग रहे होते हैं वो पूछते हैं, तुम सच में खुश हो? जब हम हार के बाद सब छोड़ देना चाहते हैं वो कहते हैं, एक बार और ट्राई करो। और कभी कभी वो कुछ भी नहीं करते, वो बस हमें याद दिलाते हैं कि हम हार सकते हैं, कि हम कर सकते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? कभी मम्मा, कभी पापा, कभी कोई टीचर, कभी कोई दोस्त, कभी कोई सीनियर, कभी कोई कॉलीग, और कभी एक ऐसा इंसान जिससे हमने जिंदगी में सिर्फ कुछ महीने ही जाना हो, लेकिन उसकी बात, उसकी वो एक बात सालों तक याद रहती है,
और यहीं आता है एक बहुत ही खूबसूरत सवाल, क्या किसी को गाइड करने के लिए उसकी जिंदगी कंट्रोल करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। एक अच्छा गाइड आपको अपने पैरों पर चलना सिखाता है। आपकी जगह चल नहीं सकता, वो आपके डिसीजंस नहीं चुराता, वो आपको डिसीजन लेने लायक बनाता है। और शायद इसीलिए हमारे पारंपरिक विचारों में जुपिटर को गुरु से जोड़ा गया है। गुरु का मतलब सिर्फ क्लासरूम वाला टीचर नहीं है, गुरु का अर्थ है जो अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए। और ये रोल किसी एक प्रोफेशन तक लिमिटेड नहीं है। कोई प्रोफेसर आपका गुरु हो सकता है, कोई म्यूजिशियन, कोई राइटर, कोई एल्डर, कोई पेरेंट, कोई कोच, या फिर लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको अंदर से बदल दे। लेकिन यहाँ एक और फनी बात है, हम अक्सर गाइडेंस तब मांगते हैं जब प्रॉब्लम ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी होती है। पहले डिसीजन मैं कर रहा हूँ, फिर गलती, फिर पैनिक और फिर फोन। भाई एक प्रॉब्लम हो गई है और सामने वाला, मैंने पहले ही कहा था, ये दुनिया का सबसे फेमस सेंटेंस है, मैंने पहले ही कहा था। लेकिन सच ये है कि कभी कभी हम गाइडेंस सुनते हुए भी नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हम सबको अपनी लाइफ का हीरो बनना होता है और हीरो को लगता है मुझे तो सब पता है। लेकिन मैच्योरिटी शायद तब आती है जब हम कह पाते हैं मुझे सब नहीं पता। जी हाँ, सब नहीं पता। और उसके बाद किसी से सीखने की जगह बनती है, वो स्पेस क्रिएट होती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो मन में एक नाम लीजिए, ऐसा कोई इंसान जिसने कभी आपकी लाइफ को किसी ना किसी तरह बेटर बनाया। शायद उसने आपको कोई स्किल सिखाई, शायद किसी मुश्किल वक्त में आपका हाथ पकड़ा, शायद आपको किसी गलत डिसीजन से भी रोका, या शायद उसने सिर्फ इतना कहा मैं हूं, तुम ट्राई तो करो। बस एक नाम याद कीजिए और अब सोचिए, अगर वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आता तो क्या आप आज भी वही होते जो आप हैं? शायद हाँ या शायद नहीं, लेकिन कुछ तो बदला होगा उसके होने से। और इसी को कहते हैं डायरेक्शन। जुपिटर हमें एक और इंटरेस्टिंग बात सिखाता है, हर बड़ी चीज का इम्पैक्ट हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी कभी कोई चीजें अपनी जगह बनी रहती हैं और उसकी प्रेजेंस बहुत कुछ बदल देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो रोज आपको एडवाइस नहीं देते, रोज फोन भी नहीं करते, हर प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करते, लेकिन आपको पता होता है कि अगर बुरा वक्त आया तो मैं इन्हें कॉल कर सकती हूँ। क्या खूबसूरत फीलिंग है ना, किसी का आपकी लाइफ में होना और उसका सिर्फ होना एक सेफ्टी नेट जैसा लगना। और दोस्तों शायद इसीलिए हमें सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को थैंक नहीं करना चाहिए, हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने हमें गलत रास्ते से वापस लाया हो, जिन्होंने हमारी हार में भी हमारा मजाक नहीं बनाया, जिन्होंने हमेशा कहा चलो फिर से शुरू करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट उन लोगों को जिन्होंने हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। क्योंकि असली गाइडेंस वो नहीं है जो आपको हमेशा अपने पीछे चलाए, असली गाइडेंस तो वो है जो एक दिन कह दे अब तुम कर सकते हो। तो आज की बातें इधर की उधर की का थॉट बहुत सिंपल है, आसमान में जुपिटर अपनी जगह बनाकर सोलर सिस्टम के मूवमेंट्स को प्रभावित तो करता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग बस अपनी प्रेजेंस से, अपनी बातों के एक्सपीरियंस से हमारी डायरेक्शन बदल देते हैं। हो सकता है उन्होंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की हो, लेकिन उन्होंने आपको प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता जरूर दिखाया हो। और कभी कभी रास्ता दिखाना चलने से ज्यादा बड़ी मदद होती है। तो आज अपनी लाइफ के उस एक इंसान को याद कीजिए
जिसने आपको कभी संभाला, कभी आपको कुछ सिखाया और कभी आपको अपनी ही नजरों में थोड़ा बेटर बना दिया। और अगर मौका मिले तो उन्हें एक सिंपल सा मैसेज कर दीजिए आज, थैंक यू, आपकी वो एक बात आज भी मेरे काम आती है। हो सकता है उनके लिए वो सिर्फ एक छोटी सी बात थी, लेकिन आपकी जिंदगी में वही बात एक टर्निंग पॉइंट बन गई। मैं हूं आपकी आरजे, आपकी तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। याद रखिए दोस्तों, हर सफर में हमें कोई ना कोई डायरेक्शन देने वाला मिलता जरूर है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पति ने कहा, जज साहब मुझे मेरी पत्नी से तलाक चाहिए, वो मुझे बर्तन फेंक फेंक के मारती है। जज ने कहा, वो अभी से मार रही है या पहले से मारती थी? आदमी ने कहा, सर वो बहुत पहले से मारती थी। तो जज ने कहा, तो अब क्यों तलाक चाहिए? आदमी ने कहा, अब उसका निशाना पक्का हो गया है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक था भिखारी। रेलवे में सफर करते हुए भीख मांगने के दौरान एक बार एक सूट बूट पहने हुए सेठ जी से उसकी मुलाकात हो गई। उसने सोचा कि ये व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर बढ़िया पैसा मिल जाएगा। वो उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, अरे यार तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे पाऊं। सेठ बोला, देखो जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास रखता हूं भाई। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तभी मैं तुमको बदले में कुछ दे पाऊंगा। तभी स्टेशन आ गया जहां पर उस सेठ को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही हुई बात के बारे में सोचता रहा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे तो पाता नहीं, लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए मांगता ही रहूंगा, समझ नहीं आ रही बात। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि चलो जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उसको कुछ ना कुछ देगा जरूर। लेकिन अब उसके दिमाग में ये सवाल उठ गया कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में भला क्या दे देगा दूसरे को। ये बात सोचते हुए पूरा दिन गुजर गया लेकिन उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन जब स्टेशन के पास बैठा हुआ था वो, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ गई जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे, जंगली फूल थे। उसने सोचा, अच्छा क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। तो उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिन बीते, उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक लोग उसे भीख देते ही रहते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो गए तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही होने लगा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, सेठ जी आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दे दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उन्हें दिए। इस सेठ को यह बात बड़ी पसंद आई। सेठ बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल देगा। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर हो सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक साल गुजर गया।
उसी स्टेशन पर दो लोग सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, सेठ जी, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ बोला, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ बोला, भाई मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम लोग दो बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी दो बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में हूं कौन। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से बस दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। हमारे भारतीय संस्कृति में शायद इसीलिए खुद को जानने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। और समझने की बात यह है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तब भी हमें कुछ मिलता है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है।
1: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान है वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने

कुछ दिया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों? वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी। धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान? फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें, भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, यदि लोग गलतियों से सबक लेते हैं तो फिर दूसरी गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हैं? दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझमें कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझमें कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। एक मुद्दत से मैंने न तो मोहब्बत बदली और न ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ पर क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया है मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हस्ती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, खुश हूं और सबको खुश रखता हूं। लापरवाह हूं खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

बेहतर जगह बनानी शुरू की होगी। लेकिन तब मैं जानता नहीं था कि कविता भी कोई चीज होती है। हालांकि अब भी मुझे नहीं पता कि कविता क्या होती है, लेकिन मैं उसे बार बार लिखकर समझने की कोशिश करता रहता हूं। मैं अब तक वो कविता नहीं लिख पाया हूं जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है। खैर, मैं असल कहानी पर आता हूं। तो उन दिनों उस नाजुक उम्र में मैंने शराब, सिगरेट और कुश्ती जैसी सारी सख्त चीजें की। इनमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उस वक्त नहीं की जाना चाहिए थी, लेकिन उम्र हमेशा मुझे अपने से आगे की ओर ही धकेलती रही। मैं उन दिनों जंगल, घास, फूल, कांटे, गायें, बेल, तालाब, कुओं और फसलों की संगत में रहता था। मुझे लगता था एक दिन इनमें से ही कुछ बन जाऊंगा। मैं किसी दिन घास बन जाऊंगा और हवा के साथ रहूंगा। कभी लगता मैं कोई कुआं हो सकता हूं जिसका पानी खेतों में जाएगा। कई बार

सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो तुम चल सको तो चलो। इधर उधर हैं कई मंजिलें, इधर उधर हैं कई मंजिलें, जो तुम चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो तुम ढल सको हाँ तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहां बदलती है जिंदगी, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहां कोई किसी को नहीं देता रास्ता, जो मुझे गिरा कर चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: कोयले की कहानी।
3: दोस्तों जरा पहचानिए तो, ये आवाज किसकी है? पहचानिए पहचानिए। ये भाप के इंजन की आवाज है। क्या आपको ये मालूम है कि भाप के इंजन को चलाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता था? तो चलिए हम बता देते हैं, वो ईंधन था कोयला। क्या आपने कोयला देखा है? आजकल कोयले का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। आइए सुनते हैं कोयले की कहानी उसी की जुबानी।

अरबों सालों में बन पाया था, गहराई में दबा पड़ा था, प्राकृतिक प्रक्रमों के चलने से, घने जंगलों के दबने से, मिट्टी की परतें जमने से, दाब ताप के फिर बढ़ने से, कार्बनीकरण प्रक्रिया के चलने से, धीरे धीरे हौले हौले मृत वनस्पति बदली मुझमें।

我的木瓜都蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦मकड़ बम्बे बो अस्सी नब्बे पूरे सौ सौ में निकला धागा तो चोर निकल के भागा बच्चों खूब हंसो मजे करो बैठे ना रहो खूब

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: चरवाहा।

0: अरे किशन, किशन बेटा कहाँ है तू?
1: क्या है काका?
0: आज पाठशाला नहीं जाना
1: है काका? आज तो रविवार है।
0: ओ, मैं तो भूल ही गया, आज तो तुम्हारी रविवार की छुट्टी है। सुन तू जा, आज तू ही पशु चरा ला।
1: काका मुझे तो आज पाठ याद करना है।
0: ओफो, तुझे तो बस सारा दिन पाठ ही याद करना है। ऐसा कर, पुस्तक साथ ही लेता जा, पशु चरते रहेंगे और तुम अपना पाठ याद कर लेना।
1: वाह काका, जब मैं पाठ याद करता हूँ ना तो पूरा ध्यान पुस्तक में ही रखता हूँ, इधर उधर नहीं देखता।
0: अरे शाम को आकर पाठ याद कर लेना। ये ले पकड़ लाठी और ले जा पशुओं को चराने, और हाँ ये ले डिब्बा, इसमें भात है।
1: अच्छा,
0: दोपहर को खा लेना। मुझे तो आज शहर जाना है।
1: तब तो ठीक है काका। हाँ काका, मेरे लिए शहर से हिंदी की पुस्तक लेते आइएगा।
0: ठीक है बेटा, तुम्हारी हिंदी की पुस्तक लेता आऊंगा।
1: चल शेरू, चल दोस्त, आज तुझे भी खूब घुमाऊंगा, चला मेरे साथ।
2: किशन पशुओं को लेकर चरागाह में जा पहुंचा। वो आज बहुत खुश था। पशु हरी हरी घास चरने लगे। किशन अपने पशुओं का पूरा पूरा ध्यान रखता कि उसके पशु किसी के खेत में घुसकर कोई नुकसान ना कर दे। वो

0: अरे ये चादर ओढ़े कौन सो रहा है? कौन है भाई? कौन है भाई?
1: अरे चादर क्यों खींच रहा है, क्यों चिल्ला रहा है?
2: सोने भी नहीं देता।
0: अरे शंभू तू तो आराम से सो रहा है, सामने देख। अरे उठना, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
1: ओफो तुझे क्या, तेरा खेत तो नहीं उजाड़ रहे, जा जाकर अपना काम कर।
0: अरे शंभू कैसा आदमी है रे तू,
1: क्यों परेशान कर रहा है, चल जा यहाँ से, सोने भी नहीं देता। जा जाकर तू ही पशुओं को बाहर निकाल दे।
0: अरे इतने सारे पशु मैं अकेले कैसे निकालूंगा? देख, अरे देख ना किस बुरी तरह से खेत को उजाड़ रहे हैं।
1: एक बार कह दिया ना तेरा खेत तो नहीं है, फिर तुझे क्या परेशानी है?
3: मेरी समझ में नहीं आ रहा।
0: खेत तो सभी के होते हैं, आज तेरे पशु मुखिया काका के खेत में घुसे हैं, कल तेरे खेतों में किसी और के पशु भी घुस सकते हैं, तब तेरी समझ में आएगा।
1: अच्छा जा जा जा जा जा,
3: मुझे सोने दे।
0: किसी का खेत उजड़ रहा है और इसे कोई चिंता ही नहीं।
4: भागता भागता किशन मुखिया काका के खेत में जा पहुंचा और अकेले ही लाठी घुमाते हुए खेत में से पशुओं को निकालने लगा। शेरू भी भौं भौं करके पशुओं को भगाने में उसकी मदद करने लगा। इतने में ही किशन ने दूर से देखा मुखिया काका उसी की तरफ आ रहे हैं।
5: तुम खेत में क्या कर रहे हो?
0: मुखिया काका पशु खेत में घुसाए थे, उन्हें निकाल रहा था।
5: अरे ये सब तरबूज और खरबूजे कैसे बिखरे हैं, किसने किया ये सब?
0: वो काका शंभू है ना, उसके पशु खेत में घुसाए थे।
5: और शंभू कहाँ था?
0: वो देखिए, वो वहाँ चादर ओढ़े सो रहा है, वो पेड़ के नीचे।
5: तो फिर उसके पशु किसने निकाले?
0: वो तो मैंने देख लिया काका, नहीं तो।
5: तो तूने शंभू को नहीं जगाया?
0: बहुत जगाया काका, बहुत जगाया, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी।
5: इन्हें अकेले ही इतने सारे पशु तुमने कैसे निकाले?
0: मेरे पास लाठी है ना,
5: हाँ।
0: इसी से, और मेरे शेरू ने भी मेरी मदद की।

0: अजी मुखिया जी, मेरे पशु तो यही थे, किसी और के पशु घुसे होंगे।
1: अरे शंभू, क्या बात कर रहा है? मैंने तुम्हें इतना चिल्ला चिल्ला कर बताया, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
2: तू चुप रह।
0: तू तो आज पहली बार पशु चराने आया है, तुझे कुछ मालूम भी है?
3: अगर आज किशन न होता तो मेरे खेत में एक भी तरबूज और खरबूजा ना बचता, समझे?
0: लेकिन मेरे पशु कहाँ हैं?
3: खुद तो सो रहा था और हमसे पूछ रहा है कि पशु कहाँ हैं।
0: मुखिया काका, आज माफ कर दो, आगे से ध्यान रखूंगा।
3: अच्छा चल जा और देख। हाँ? आगे से अपने पशुओं का ख्याल रखना
0: जी,
3: किसी और के खेत में ना घुसे
0: जी।
3: हाँ, तुझे छोड़ रहा हूँ
0: जी,
3: पर आगे से ध्यान रखना, समझे?
0: मुखिया जी, आगे ऐसा कभी नहीं होगा, आगे ऐसा कभी नहीं होगा।
3: चल बेटा किशन, तुझे मीठे तरबूज और खरबूजे खिलाता हूँ।
1: मुखिया जी, किसी और दिन खाऊंगा, अब मैं भी चलता हूँ। मेरे पशु वो देखिए, ओ दूर निकल गए हैं। अच्छा मुखिया जी।
3: अच्छा बेटा किशन, किसी दिन घर आना। हाँ
1: आऊंगा, जरूर आऊंगा मुखिया जी। चल शेरू आ।
4: किशन जब शाम को घर लौटा तो उसके पिताजी शहर से वापस आ गए थे। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि कैसे शंभू के पशु मुखिया काका के खेत में घुस गए थे और शंभू पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने अकेले ही मुखिया काका के खेत से पशुओं को बाहर निकाल दिया।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कार्यक्रम में हम आपके लिए कोई ना कोई सुविचार लेकर आते हैं, तो आज आपके लिए प्रस्तुत करते हैं सबसे पहले एक सुविचार।
2: तो सुविचार है,
0: द वन हु चेजेस टू रैबिट्स गेट्स नन, यानी
2: जो दो खरगोशों का पीछा करता है वो किसी को भी नहीं पकड़ पाता।
0: वो किसी को भी पकड़ नहीं पाता। तो श्रोताओं, इस सुविचार का अर्थ ये हुआ कि हमें एक साथ बहुत सारे लक्ष्य नहीं रखने चाहिए,
2: मात्र एक लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित करना चाहिए।
0: जी हाँ, तो जब भी कोई काम करें तो उसी पर अपने लक्ष्य को साध करके रखें, सफलता आपके सामने होगी। साथियों, अब बारी है श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को जानने की। हमारे एक श्रोता मित्र ने लिखा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैं ब्लाइंड हूँ, मेरा नाम भी दीजिए प्रोग्राम में। तो दोस्त, आपकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन समस्या ये है कि आपने अपना नाम नहीं बताया।
2: सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया अपना नाम जरूर बताइए
0: और अपना पता और राज्य का नाम भी जरूर बताइए,
2: और हाँ, संपर्क बनाए रखिए।
0: एक और श्रोता की प्रतिक्रिया हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और इस श्रोता ने लिखा है,
2: अजीत जी और विमलेश जी को मेरा सप्रेम नमस्कार।
0: मैं कानाराम चौहान, गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से। हमारा अपना कार्यक्रम उमंग मैं नियमित रूप से सुनता हूँ। इसमें दी जाने वाली जानकारियाँ मनोरंजक के साथ साथ बड़ी ही ज्ञानवर्धक होती हैं। विगत दिनों में इंसुलिन की कहानी आपने सुनाई, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसके लिए CIET NCERT का धन्यवाद।
2: श्रोता मित्रों, जो कानाराम जी ने लिखा है वो एक सैंपल है।
0: सैंपल सुनाने का तात्पर्य ये था कि इसी प्रकार आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, यानी नाम,
2: जगह,
0: जिला और
2: राज्य।
0: तो आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम के द्वारा यात्रा करते हैं एक विचित्र संसार की,
2: जहां कुछ भी हमारी दुनिया की तरह नहीं है।
0: सुनते हैं कार्यक्रम गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
3: मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर

0: किनारे आ गया और थक कर वहीं लेट गया। बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। ये एक मानव आकृति थी, बहुत ही छोटी सी। कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा,
1: कौन हो तुम?
0: मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उसकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। वो मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान ला ला कर मेरे मुंह में उंडेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उंडेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़खड़ खड़खड़ की आवाज से जब मेरी नींद टूटी तो ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। मेरे वहां पहुंचते ही लिलिपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलिपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी तरह मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं। पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सबके बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली। इससे मुझे बहुत

विदा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: गुलीवर की विचित्र यात्राएं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: बिन्नी का सपना।
0: अरे तुम्हें क्या हुआ?
2: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
0: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
2: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती है, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला।

0: हाँ छोटी मोटी बीमारी हुई तो ये झल जाता,
1: यही वजह थी कड़कनाथ,
0: यही वजह थी कड़कनाथ स्टार्ट करने की
1: जी। और अभी अंडे आ रहे हैं,
0: हाँ लेइंग चल रही है, आगे लेइंग, आगे लेइंग बर्ड है
1: दिखाइए। हाँ। अच्छा जो लेइंग वाला बर्ड है अभी कितना बर्ड है आपके पास में?
0: अभी 400 बर्ड है,
1: 400 बर्ड है।
0: हाँ।
1: अंडे कितने आ रहे हैं उनसे?
0: 200 अंडे के आसपास डेली की,
1: 200 के आसपास प्रोडक्शन है, अंडे रोज आ रहे हैं।
0: हाँ।
1: तो जो अंडे हैं वो कहाँ सेल कर रहे हैं आप?
0: सोसाइटीज में जाते हैं, तो मैंने मार्केटिंग भी सोसाइटी में स्टार्ट की थी, और चिकन भी जा रहा है पैक होके, यहाँ से ऑनलाइन डिलीवरी है चिकन,
1: मतलब
0: की भी
1: आप चिकन भी जो है
0: डिलीवर कर देते हैं,
1: ऑनलाइन भेजते हैं।
0: हाँ। और एग भी ऑनलाइन डिलीवर कर देते
1: हैं। एग क्या रेट जाता है आपका?
0: एग अगर हम ऑनलाइन डिलीवरी की बात करें तो 800 रुपए की ट्रे जाती है,
1: 800 रुपए की,
0: और कोई फार्म से लेके जाता है तो 600 रुपए की ट्रे है,
1: 600 रुपए। सोशल मीडिया मार्केटिंग का बड़ा अच्छा फायदा उठा रहे हैं, बेशक इनका फार्म गांव में है लेकिन ये ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू अपना चिकन और एग सेल करते हैं। कितने कितने बड़े सेक्शन बनाए हैं और लंबाई चौड़ाई क्या है इस फार्म की?
0: इसकी जो चौड़ाई है पूरे फार्म की और लंबाई 30 फुट चौड़ा है ये
1: जी,
0: और 300 फीट लंबाई है
1: जी,
0: 30x300 का साइज है।
1: बाहर भी ओपन के लिए आप फ्री रेंज के लिए भी?
0: फ्री रेंज के लिए,
1: और मुर्गियां चर भी रही हैं
0: जी जी, फ्री रेंज में भी खोलते हैं इनको
1: जी।
0: सुबह मॉर्निंग टाइम का फ्री रेंज का होता है और इवनिंग टाइम फ्री रेंज का होता है।
1: ये खर्चा कितना है आपका, लीज का है या अपना?
0: नहीं ये अपना लीज का है,
1: लीज का है।
0: हाँ जी।
1: क्या लीज जाती है?
0: 20,000 रुपए रेंट जाता है इसका,
1: 20,000 रुपए जाता है। और यहाँ पे वर्कर कितने रखे हुए हैं?
0: दो वर्कर हैं
1: और संभाल लेते हैं
0: बिल्कुल।
1: आप इसके अलावा क्या करते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या?
0: जी जी,
1: इस बारे में बताइए।
0: मैं MBA हूँ
1: जी,
0: ऑपरेशन से, मेन काम मेरा प्रॉपर्टी का है,
1: प्रॉपर्टी में डील करते हैं। और उसके बाद ये आपने?
0: ये मैंने अभी स्टार्टअप किया है 8-9 महीने पहले,
1: 8-9 महीने से किया।
0: हाँ जी।
1: आप इतने अच्छे धंधे में आप क्यों आए मुर्गी पालन में?
0: एक्चुअली है क्या सर, धंधा आदमी हर कोई चाहता है एक्सपेंड करना अपना
1: जी,
0: तो वो तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है।
1: अच्छा,
0: ये साइड बिजनेस के लिए एक बिजनेस और स्टार्ट,
1: मतलब समथिंग मोर?
0: हाँ जी, समथिंग मोर
1: जी, मतलब कुछ और कर ले हटके।
0: बिल्कुल।
1: प्रेरणा कैसे मिली?
0: एक्चुअली है क्या, आप अगर मेरा बैकग्राउंड पीछे से देखेंगे तो मैं किसान हूँ।
1: अच्छा, कहाँ से है?
0: मैं अमरोहा से बिलोंग करता हूँ,
1: अमरोहा से।
0: हाँ जी, तो बाप दादा ये किसानी की है सबने, तो किसान सी से थोड़ा जुड़ाव भी है, लगाव भी है, और हमने गाय भैंस पाली है, मतलब बचपन से ये देखा चीजों करते हुए, तो एक मन भी था कि कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए। अभी तो ये स्टार्ट फेस है, इसके अलावा गोट फार्मिंग और अदर बर्ड भी रखने का प्लान है इसमें।
1: मतलब अभी आपने कड़कनाथ से शुरुआत की है, आगे आपने गोट फार्मिंग करनी है और पोल्ट्री की दूसरी ब्रीड भी आप रखने का इरादा है?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: जी।
1: इतने शानदार बर्ड है आपके
0: जी,
1: जो चिकन है,
0: एडल्ट चिकन है। हाँ जी,
1: चिकन पर्पस से आपने ये
0: चिकन पर्पस अलग रखे,
1: बेसिकली जो सर्दियां चल रही हैं अभी
0: जी जी,
1: सर्दियों के लिए कोई खास इंतजाम किया?
0: वैसे तो जो एडल्ट बर्ड होता है सर्दी में इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा, मैंने पिछली सर्दी में भी देखा हुआ है इसको,
1: क्योंकि अच्छे खासे
0: बर्ड है। मेन जो दिक्कत रहती है वो बच्चों को रहती है, तो बच्चों के लिए हमने भट्टियां रखी हुई है। अगर हम बच्चे पालते हैं तो हम ये जो स्टार्ट होगा ये लेइंग पे जब आ जाएगा तो वो वाला सेक्शन खाली हो जाएगा,
1: मतलब ब्रूडिंग का भी आपने ऑप्शन रखा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आप इतने दिन से कर रहे हैं, 8-9 महीने हो गए आप
0: जी,
1: कैसा लगा आपको ये काम?
0: बहुत बढ़िया काम है
1: जी।
0: बस मेन काम है मार्केटिंग।
1: अच्छा,
0: अगर आपकी मार्केट नहीं है
1: जी
0: तो आप कुछ भी नहीं है, फिर तो आपको इसको बंद करना पड़ेगा।
1: यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ आपने ये?
0: एक्चुअली है क्या, खाली इसने छोड़ा हुआ है कि जैसे ही वो लेइंग बर्ड स्टार्ट होगा
1: अच्छा,
0: ये सेक्शन बढ़ेगा
1: तो इसमें आ जाएगा
0: उधर फिर बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे।
1: स्पेस
0: ज्यादा चाहिए होगा। हाँ जी,
1: यहाँ पे आपने अंडे की ट्री रखी हुई है
0: जी,
1: मतलब स्टोर आपने यहाँ,
0: स्टोर यहाँ पे क्या हुआ है, रोज 2-4 दिन का माल स्टॉक होता है, क्योंकि दूर जाता है प्रोडक्शन ये।
1: हाँ।
0: जो मार्केटिंग ऑनलाइन होती है वो अलग यहीं से डिलीवरी जाती है, जो बड़ा स्टॉक होता है वो एक साथ होकर जाता है।
1: मैं देख रहा हूँ आपने ट्रे बांधी हुई है
0: जी जी,
1: मतलब
0: पैकिंग में जाता
1: है,
0: रेडी टू मूव है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
1: कड़कनाथ बहुत अच्छी ब्रीड है, और लेकिन लोग बीच में तैयार करने के बाद बेच नहीं पाए
0: जी,
1: आपने कड़कनाथ ही क्यों चुना?
0: बेसिकली है क्या, सारा गेम मार्केटिंग का था
1: जी,
0: और जिस जगह ये कड़कनाथ स्टार्ट किया वो विलेज स्टाइल में था।
1: अच्छा,
0: और विलेज में इसकी मार्केट नहीं है क्योंकि महंगा बर्ड है
1: जी,
0: अंडा भी महंगा है और चिकन भी महंगा है
1: जी,
0: हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता
1: जी,
0: इसलिए मैंने नोएडा और दिल्ली के जो पॉश एरिया हैं उनको मार्केटिंग चुनी है,
1: उनको टारगेट किया
0: और फ्लैट वाले क्लाइंट को टारगेट किया, कोठी वाले क्लाइंट को टारगेट किया
1: जी,
0: जो अच्छी चीज खाना पसंद करते हैं उनके लिए फिर रेट मायने नहीं करता, वो 1,000 और 2,000 कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए।
1: तो तैयार चिकन आप किस रेट बेचते हैं?
0: तैयार चिकन अगर यहाँ से जाता है ड्रेसिंग होके तो 1200 रुपए का जाता है।
1: डिमांड कैसी है और जो रेवेन्यू आपको आ रहा है वो कैसे आ रहा है?
0: देखिए, डिमांड ठीक आने लगी है क्योंकि सर्दी बढ़ने लगी है, तो अब डिमांड और बढ़ रही है, मतलब रोज अब ऑर्डर आ रहे हैं। पहले शुरू में दिक्कत हुई मार्केटिंग, मतलब उस लेवल तक स्टार्ट नहीं हुई थी, लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे, अब धीरे धीरे काफी लोगों तक हम पहुंच लगे हैं, माउथ टू माउथ पहुंच लगे हैं, इन लोगों को हम माल दे चुके हैं, उनकी भी दोबारा रिपीट ऑर्डर आने लगे हैं
1: जी,
0: तो अब जाके बेस तैयार होने लगा है माल का।
1: मैंने देखा है जिन लोगों को जरूरत है उनको मिलते नहीं है
0: जी,
1: और जिन्हें देना है वो वहाँ पहुँच नहीं पाते, कहीं ना कहीं ये मार्केट का ही खेल है।
0: बिल्कुल,
1: रिक्वायरमेंट पूरी भी नहीं हो पा रही है और जहाँ तैयार हो रहा है
0: वहाँ माल बिक नहीं रहा है,
1: पहुँच नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा गैप है इसमें।
0: जी जी जी जी
1: जी। और आपने अपना ये सोशल मीडिया के थ्रू आपने अपनी मार्केटिंग को एनरिच किया।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: सोशल मीडिया से क्या होता है कि आप कम टाइम में ज्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं।
2: भारत में कड़कनाथ मुर्गा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिले में ही मिलता है, किंतु कड़कनाथ की इस ब्रीड को अब तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाने लगा है। कड़कनाथ मुर्गे की तासीर गर्म होती है तथा देश से तकरीबन सभी हिस्सों में इस मुर्गे की काफी मांग रहती है। यह तीन प्रजातियों में पाया जाता है, जिसमें पेंसिल्ड, गोल्डन और झेड ब्लैक शामिल होते हैं। झेड ब्लैक मुर्गे के पंख पूरे काले होते हैं तथा पेंसिल्ड प्रजाति के मुर्गे का आकार पेंसिल की तरह होता है। वहीं गोल्डन प्रजाति के मुर्गे के पंखों पर गोल्डन छिटे पड़े होते हैं। कड़कनाथ मुर्गों की प्रजाति में आने वाला सबसे महंगा मुर्गा है। इसका रंग, खून, पंजे और आंखें आदि सब कुछ काले रंग के ही हैं। इसलिए इसे काले चिकन या काले मांस के नाम से भी जाना जाता है। बाजार में इस मुर्गे की कीमत लगभग 1200 रुपये प्रति किलो से 1800 रुपये प्रति किलो तक है। अन्य मुर्गों के मुकाबले यह केवल 5 से 6 महीने के भीतर ही तैयार हो जाता है। कड़कनाथ मुर्गे चारे में बरसीम और चरी आदि खाते हैं, अतः इन्हें पालने में लागत कम लगती है और मुनाफा काफी ज्यादा होता है। अपनी कई खूबियों के कारण इस मुर्गे की सबसे अधिक मांग है। इसकी एक खास बात यह भी है कि यह अन्य मुर्गों की तुलना में इनमें वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिसे खाने से शरीर को नुकसान नहीं होता। कड़कनाथ मुर्गा मूल रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मिलता है और इसकी कीमत सामान्य मुर्गों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा भी बेहद ही ज्यादा पाई जाती है। साथ ही इसकी हड्डियाँ और मांस का कलर भी काला होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तो सालो किसान भाइयों, हव हमली कड़कनाथ मुर्गानी वातियो मारा सहयोगी भाई कमता डामोर देखी ढिल्ली बोली माँ।
3: तो किसान भाइयों, कड़कनाथ एवो कुकड़ू से जो कि अपना झाबुआ जिला में पड़वा वालों से अने तीनी प्रदेश भर में अने देश भर में इन्होंने काफी डिमांड से अने ज्यादा डिमांड अने उत्पादन कम रहने का कारण इन्होंने ज्यादा इन्होंने कीमत मिले से। तो किसान भाइयों, इन्हान पालवा हारू एक सही तरीका थी इन्हें देखरेख करनी पड़े अने इनो कालो मा अने पूरी दुनिया मा घणो ही कीमती अने घणो दुर्लभ अने कठिन माने जाए से। तो किसान साथियों, हमने तक पूरा विश्व मा 25 से ज्यादा कुकड़ा नी प्रजातियों पाई जाए से। तीन मा काला मांस ना नाम थी इन्होंने कड़कनाथ ना जाने से। तो इनमा भारत ना कड़कनाथ ने अलावा चीन नी सिल्की अने इंडोनेशिया नी आयाम सेनिनी अने वियतनाम नी ओके नामनो कुकड़ो काफी प्रसिद्ध से। अने इना काला रंग नी मुख्य वजह थी फाइब्रोमिलेनोसिस नामनी एक अनुवांशिक गुण वालो रेसे अने इनमा मेलेनिन पिगमेंट कड़कनाथ मांस हड्डी अने त्वचाना संचय थी थाय से। कड़कनाथ भारत नो एक पंजीकृत मुर्गानी एक नस्ल से अने तीना ने हाल ही में मध्य प्रदेश ने माहना हारू भौगोलिक संकेत GI टैग मिलो से। झाबुआ मध्य प्रदेश ने पहचान यू आहर को केवल झाबुआ में पाई जाने वाले कुकड़ा ने एक प्रजाति कड़कनाथ ना कारण पूरा देह में से। क्षेत्रीय भाषा में कड़कनाथ ने काला मासी ना नाम तो भी जाने जाए से, क्योंकि इहुनो मांस चोंस, कलंगी, जुबान अने पोग, नोक, सांबड़ी इनी हगली काली रहे से अने इनो लोई भी कालो रहे से। तो किसान साथियों, क्योंकि तीन हारू मिलेनिन पिगमेंट ने ज्यादातर रेवाने कारण रहे से, इनमा माह मा प्रोटीन प्रचुर मात्रा मा अने वसा न्यूनतम मात्रा मा रहे से। तिनथी हृदय, डायबिटीज रोगियों हरियो काफी उत्तम आहार से। इहुनो मा हवाद वालो अने आसानी थू पचवा वालो रहे से। इहुनी इनी विशेषता ने कारण बजार मा इहुनी मांग काफी तेज रहेशे अने काफी ऊंची दरी पर इना ज्यादा कीमत मा वेचाई जायशे। कड़कनाथ नी तीन प्रजातियों रहेशे, पहली प्रजाति से जेट अने बीजी से ब्लेक अने अगली प्रजाति पेंसिल्ड गोल्डन पाई जायशे। इनमांथी जेट ब्लेक प्रजाति सबथी ज्यादा मात्रा मा अने गोल्डन प्रजाति सबथी कम मात्रा मा पाई जायशे। नर कड़कनाथ नो औसतन वजन 180 थी लगाड़ीने 2.5 किलो वजन तक नो रहेशे। मादा कड़कनाथ नो औसतन वजन ना अने औसतन वजन 180 थी 2.5 किलो तक ने लगभग रहेशे अने एनो औसतन वजन 125 थी 1.5 किलो तक लगभग रहेशे। मादा कड़कनाथ हर वरे 110 થી 120 ઈંડા મેલે છે અને ઇના ઈંડા નાના મધ્યમ આકારના હલકા ભૂરા ગુલાબી રંગના અને વજનમાં 30 થી 35 ગ્રામ વજનવાળા રહેશે। આર્થિક અને સામાજિક પ્રભાવ તો કિસાન ભાઈઓ, મુર્ગી પાલનમાં કુક્કુટ પ્રબંધનનો મહત્વ પૂરો યોગદાન રહેશે। કડકનાથ વ્યવસાયમાં લગભગ 80% સમસ્યાઓ કુક્કુટ પ્રબંધનમાં કરીગી લાપરવાહીને કારણ પેદા થાય છે। કડકનાથ મુર્ગી પાલનવાળાને ઘણી એવી સાવધાનીઓને ધ્યાન રાખીને આગાડી વળવાની સલાહ આલી જાય છે કે કઈની બી કડકનાથ ફાર્મને એવા વિકટ સમસ્યાનો સામનો નહીં કરવો પડે એના હારું વ્યવસાયમાં કદમ રાખવાથી પહેલું પૂરો વિશ્વાસની હાટે જાણકારી પ્રાપ્ત કરી લેવી જોઈએ અને એની ટ્રેનિંગ બી કરી લેવી જોઈએ। ब्रूडिंग व्यवस्था की जानकारी, केम की ब्रूडिंग में ही पक्षी नो भविष्य उत्पादन अने लाभ हानि निर्धारित थाय छे। कड़कनाथ चूजा में सही समय पर टीकाकरण कार्यक्रम अने कड़कनाथ पक्षियों में सही समय पर कृमिनाशक दवाइयों नो प्रयोग करवानो यु सबथु पहलू प्रमुख काम रहेशे। कड़कनाथ मांस सेवन थी लाभ, तुक्षण साथियों ओरिजिनल कड़कनाथ मांस में भरपूर प्रोटीन रहेशे अने वसा इनमा नानी बराबर रहेशे। इनी हारू इनाने हगला खिलाड़ियों ने खावानी सलाह आली जायशे। कड़कनाथ माहना सेवन थी केवल शरीर नी बढ़ोतरी बल्कि रोग प्रतिरोधकता क्षमता भी इनथी बढ़ेशे अने अनेक बीमारियों थी इनाने खावाथी वसी सके। तविसान साथियों, कड़कनाथ माहनी मांग देह ने अलावा विदेशों में घणो ज्यादा रहेवाने कारण एक असल व्यवसाय अने व्यापार युवाओं हारू उपलब्ध थाय छे। कड़कनाथ होम्योपैथी चिकित्सा अने तंत्रिका विकार में विशेष औषधिनो काम करे छे अने आदिवासी लोग इनाने खून थी पूरा तन अने चीरकालीन गंभीर रोगों ना इलाज भी इनमा या करे छे। मनुष्य इनमा इनथी माहनो उपयोग काम उत्तेजकना रूप में लैंगिक ताकत बढ़ावा हारू भी प्रयोग करे छे। आर्थिक अने सामाजिक प्रभाव, तो किसान साथियों कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ ने द्वारा गांवों में किसानों ने हाथे बातचीत ना टाइम पर जो जानकारी केंद्र ना विशेषज्ञों ની ભેળી કરી કે ઇનમાં કડકનાથની જ્યાદા માંગ અને કમ વૃદ્ધિ પર જ્યાદાતર મૃત્યુદર મુખ્ય રૂપથી હામી આવી છે। એની પ્રજાતિની વિકાસ અને ગતિ અવરોધ કર્યા જાય છે કે વૈજ્ઞાનિકને દ્વારા કિસાનોની હાથે વિચાર વિમર્શની બાદમાં એક સમાન વિચારધારા અને મુરગી પાલનના ઈચ્છુક કિસાનોનો એક સમૂહ શ્રી કડકનાથ સમૂહ બનાયો છે અને કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના સહયોગથી કડકનાથ પ્રજાતિના વિકાસ હારું વૈજ્ઞાનિકીને દ્વારા કડકનાથ પાલકોને આહાર પ્રબંધન, જળ પ્રબંધન, ટીકાકરણ, રોગ પ્રબંધન અને વિપણન આદિની પૂરી જાણકારી પ્રશિક્ષણ સૈદ્ધાંતિક રૂપથો વધાર્યો ગયો છે। કડકનાથ પાલનની पूरी तकनीकी जानकारी हामजी करीने किसान स्वेच्छाथी हाउ इनो पालन करी रासे अने कम लागतनी मुर्गी आहार नो प्रयोग भी करवा लाग्या छे। आदिवासी किसान भाई इनी समूह थी काफी प्रभावित से अने कड़कनाथ पालन करीने आत्मनिर्भर बनी रहेशे। तिनथी तिना फल स्वरूप इना गांवों थी आदिवासी भाइयों पलायन कम थाई रहेशे अने एवी तरह थी व्यापार मां भी इहुनी रुचि बढ़ी रहेशे। वर्ष 2019-20 मां कृषि विज्ञान केंद्र झाबवानी तरफ थी कड़कनाथ ने अजोला खवाड़ी ने इहुनो प्रभाव वैज्ञानिक ने द्वारा देखे जाय रह्यो छे। तिहुनो सकारात्मक प्रभाव देखवा मळी रह्यो छे। कृषि विज्ञान केंद्र झाबवा ने द्वारा आर्या परियोजना, निकरा परियोजना अने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ना अंतर्गत ग्रामीण युवाओं ने प्रशिक्षण आलीने तिहुन स्वावलंबी बनावानुं काम भी करी जाय रह्यो छे। हमने परिस्थितियो अने बजार आकलन ना आधार पर आवाळा समय में कड़कनाथ नी बजार में मांग ज्यादातर बढ़वानी संभावना छे अने शिक्षित बेरोजगारी युवाओं हारू कड़कनाथ पालन में रोजगार नी भी अपार संभावनाओ बनी रही छे। तो किसान साथियों, कड़कनाथ प्रजाति ना माहनी खास खास विशेषताओ, तो माहनी रचना नमी नमी इनमें 17.5 थी लगाड़ी ने 73.5% तक रहेशे। अने प्रोटीन नी जो मात्रा 21 थी लगाड़ी 24% रहेशे अने वसा 1.94% तक रहेशे अने राख 1.1 थी लगाड़ी ने 2.6% तक रहेशे। ब्रॉयलर अने अन्य देशी मुर्गियों नी तुलना, तो किसान साथियों विशेषताओ रहेशे इनमां प्रोटीन कड़कनाथमां 24% अने बीजी अन्य कुकड़ियोंमां 18 लगाड़ीने 20% अने कड़कनाथमां वसानी मात्रा 1.94 थी लगाड़ीने 2.6% अने अन्य बीजी मुर्गियोंमां 13 लगाड़ीने 25%। लिनोलिक एसिड, तो किसान साथियों ये कड़कनाथ में 24% अने अन्य बीजा कुकड़ियों में 21%। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कड़कनाथ में 59 थी लगाड़ी ने 60 मिलीग्राम अने 100 ग्राम अने अन्य बीजी कुकड़ियों में 218 थी लगाड़ी ने 12 mg अने 100 ग्राम तक रहेशे। तो किसान साथियों, कड़कनाथ थी रोजगार नो अवसर, कड़कनाथ पालन में कम निवेश की जरूरत पड़े से अने कई राष्ट्रीय बैंक आपड़ा देह में पोल्ट्री ना व्यवसाय हारू लोगों ने प्रोत्साहित करवानो काम करी रहा से अने कम ब्याज नी दर पर लोन भी इनाने उपलब्ध करावी रहा से। जहां पर कड़कनाथ चिकन नी मांग ज्यादा होए तां पर प्रमोशन भी करियो जाय रह्यो छे अने कड़कनाथ में क्रॉस ब्रीडिंग करीने कम समय में ता लाभ कमावाना तरीका थी वसू जोईए। तीन थी ना केवल इनी प्रजाति ने खतरो से बल्कि आवाला दनों में इनी मांग भी काफी कम थाई जाए। तो किसान साथियों, देश ना अनेक राज्यों थी युवक अने केवल कड़कनाथ थी आपड़ी आजीविका सलाड़ी रहसे बल्कि कड़कनाथ मांस ने विदेशों में भी सप्लाई करी रहसे। अरे किसान भाइयों, कड़कनाथ कुक्कुट इकाई नो वितरण भी कृषि विज्ञान केंद्र थी तलाश करीने किसान भाई इनी जानकारी प्राप्त करी सके। तो किसान साथियों, कुकड़ा कुकड़ियों ने बीमारियों थी वसाड़वा हारू कुछ उपाय, एहमा सस्तु पहलू किसान भाई ने साफ सफाई पर पूरो ध्यान देवो जोईए अने सच ओहे पक्षी तो सुरक्षित इंसान भी रह सके। तो किसान साथियों, पक्षियों ना बर्ड फ्लू अने अन्य बीमारियों थी वसाड़ी सके। ई बीमारियों एक पक्षी थी बीजा पक्षी में दूषित पानी थी अने तिहुना खान पान थी अने तिहुना मूत्र पाखड़ा इने जरिए थी झाड़ू थी तेजी थी प्रभावित थाय से इना वसाड़वा हारू उपाय। तो किसान साथियों, दूरी बनाई राखवानी एक पक्षी ने बीमार पक्षियों थी अने पक्षियों ना वाड़ा में बंद राखवानो, केवल पोल्ट्री फार्म ने देखभाल करवा वाला ने एक ही व्यक्ति ने तिहुकन जाऊं जोईए अने तिहुनी एक ड्रेस भी रहेशे अने तिनी ड्रेस ने केवल वाड़ा में मई जाए તેતરા ઘડી પહેરવી પડે છે અને તીહોનું ભોજન અને તીહોનું પાણી

0: से आरजे राकेश
1: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
0: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेतीवाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। तो सालो किसान भाइयों, कार्यक्रम ने अगाड़ी बढ़ावी अने हामळी अगस्त महीना मा आपड़ा पालतू पशुओं मा ध्यान रखवा वाली वात्यो बदी वात्यो बतार है मारो सहयोगी भाई कमता डामोर जी। तो सालो किसान भाइयों, हामळी कार्यक्रम खेतीवाड़ी।
2: तो किसान साथियों, खेतीवाड़ी कार्यक्रम ना माध्यम थी हूँ आज किसान भाइयों ने अगस्त महीना मा ध्यान देवा वाली वात्यो जो आपड़ा पशुओं ने बारा मा ध्यान राखवो पड़े से अने इना टाइम पर किसान भाइयों अपना पशुओं ने मुंहपका खुरपका रोग अने गलघोटू एकटंग्या रोग फड़क्या रोग आदि ना टीका नहीं लगाड़िया है तो इना ने लगाड़ी लेवाना। मुंहपका खुरपका जो रोग थी जो ग्रस्त पशुओं ने अलग जगह पर अने वाड़ा में बांधी ने ताकि तीहुनो संक्रमण बीजा पशुओं में नहीं थाई सके। अगर आसपास ना पशुओं में ये रोग फैली रहो है तो आपड़ा पशुओं ने जो हुदो संपर्क में नहीं आवा देवानो, जो तीना पशुओं थो आपड़ अलग राखवानो। मुंहपका खुरपका रोग थी जो ग्रस्त गाय नु दूध अने बछड़ा ने भी नहीं पीवा देवानो। रोगग्रस्त पशुओं ना मुंह खूर अने बोवा ने छालो ने लाल दवानो 1% घोल बनावीने धोवानो। गलघोटू अने एकटंग्या रोग ना लक्षण देखाता ही तुरंत आपड़ वेटनरी डॉक्टर या पशु चिकित्सा थी हुदो संपर्क करवानो। बोटुलिज्मनी रोकथाम हारू मरेला पशुओं ना अवशेषों जेवी रीते हाटका है एवं जा आपड़ा पशु मरेला रहे से तीना ने आपो जा सरवा जाए से अने तीना हाटका ने हरकाई लेवाना अने त्या हमने घास में संक्रमण करे अने आपड़ा पशु तीना सारान सरवा जाए अने तीने कारण मती होने यो रोकथाम करवी जोईए अने तीन थी ये बीमारी रोकाई जाए सके। भेड़ बकरियों में PPR भेड़ चेचक अने फड़क्या रोग थावानी संभावना रहेशे अने इना रोग थी वसाड़वाना टीका भी लगाड़ी लेवाना। पशुओं ने अंतः परजीवी अने कृमिनाशक दवाईओ पशु चिकित्सा थी परामर्श करीने सही मात्रा में आलवानियों। तो किसान साथियों, पशुओं ने बाह्य परजीवी थी वसाड़वा हारू उपयुक्त दवाई पशु चिकित्सक नी परामर्श अने तीनी सलाह लीने जरूर आलवानियों। पशुशाला में फर्श अने दीवाळियों साफ सुथरा राखवानियों अने निर्गुंडी तुलसी या लींबू नो घास नो गुलदस्तो पशुशाला में लटकार नाखवानो, क्योंकि इहुनी गंध बाह्य परजीवियों ने सेटी राखे से अने पशुशाला ने कीटाणु रहित करवा हारू लीमड़ा नू तेल आधारित कीटनाशक नो प्रयोग करवानो। सुमाहाना मौसम में पशु घेरों ने हुकेलू राखवानु अने मक्खी रहित राखवा हारू नीलगिरी नू या लींबूनी घास ना तेल नो छिड़काव करवानो। पशुओं ने खनिज मिश्रण 30-50 ग्राम प्रतिदिन आलवानो अने तीनथी पशुओनी दूध उत्पादन अने शारीरिक क्षमता बनी रहे अने आपड़ा डेरी फार्म नो प्रबंधन राखवा हारू किसान भाइयों साफ सफाई हारू फार्म हारू साफ सफाई घणी जरूरी से अने गंदगी में कई तरह ना रोग पड़े से त्या पशु ने बीमार करे से अने पशुओं थी थावाला मुनाफा ने भी कम कर नाखे से। रोजाना 2-3 वारी सफाई करवी जोईए अने गोबर ने फारम थी हरकावीने सही जगह पर तीना ने नाखवो जोईए। आहार 3-4 दिन में 1 वारी पूरा फारम ने ब्लीचिंग पाउडर थी धोवू जोईए। एवं करवाथी थनेला अने अन्य बीमारियों नी थावानी संभावना कम थाई जाय से। पशु ने हर दिन 1 वारी जरूर उंगलावू जोईए तीनथी तीहुना शरीर पर लागेली गंदगी अने रोगाणु ने कम करी सकी। दूध दोहवाना टाइम पर सावधानी राखवा हारू किसान भाइयों, हाँ तमने ये बात बताड़ू कि दूध दोहवाला जो व्यक्ति है तीना हाथ असली तरह थी हाबून थी धोवेला रहेवा जोईए अने तीहुना सीतरा भी बिल्कुल साफ रहेवा जोईए। દોહવાળા જો વ્યક્તિના નોખ અસલી તરતા કાપેલા રહેવા જોઈએ અને દોહવાથી પહેલું અને બાદમાં થનોને અસલી તરથી ધોઈ લેવા જોઈએ. ઉંગળવાના હાબુથી બોબાને બી ધોઈ દેવા જોઈએ. અને એ તો આજકાલ બજારમાં બોબા ધોવા હારું કઈ એવા ઉત્પાદ બી મળે છે. બોબાને ધોવાની બાદમાં તીહુને સાફ સીતરાથી સાફ કરી દેવા જોઈએ અને અસલી તરફ હુકાડી કરીને દૂધ ધોવાનું કામ ચાલુ રાખવું જોઈએ. સ્વચ્છ હવા અને રોશની. તો કિસાન સાથીઓ, ફાર્મમાં સ્વચ્છ હવા અને રોશનીનો પ્રબંધ ઘણો જરૂરી છે અને એની વાતનો ધ્યાન રાખવાનો કે હુદી ધૂપ પશુના શરીર પર નહીં પડવી જોઈએ. તેનાથી પશુને જ્યાદા ગરમી લાગી શકે અને પશુ તણાવમાં આવી જાય છે. તો કિસાન સાથીઓ, એના સંદર્ભમાં એવું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે દુધારૂ પશુને રોજાના 16 થી 18 ઘંટોની રોશનીની બી જરૂરત પડે છે. એની બાદમાં 6 થી 8 ઘંટા ઇંદારામાં બી રાખવું જોઈએ. અને ગર્ભકાળના આખરી 2 મહિનામાં પશુને 14 થી 15 ઘંટા તક ઇંદારામાં રાખવું જોઈએ. ગરમીના દનોમાં પંખાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ અને એની સાથે 9 વાગ્યાથી સાંજનો 7 વાગે તક હર રોજ 2 ઘંટામાં પશુઓને પાણીથી ભેગાડ દેવું જોઈએ. ફાર્મથી ગંદકી અને ધુવાળું, પ્રદૂષિત હવા આદિથી દૂર રાખવું જોઈએ. પશુઓને આરામ. તો કિસાન સાથીઓ, ઇન્સાનોને તરફ પશુઓને ભી આરામ કરવાનું અસર લાગે છે. અગર સહી તરહથી પ્રબંધન હોય તો પશુ 15 થી 16 ઘંટા બેહવાનું પસંદ કરે છે. પશુ જેટલો આરામ કરે અને તેટલો હી તીહુનો સ્વાસ્થ્ય ઉત્પાદન બહેતર રહે. એના હારું કુછ આપણે દેખવું પડે છે કિસાન સાથીઓ, તે આરામદાયક ફર્શની વ્યવસ્થા લેવી જોઈએ અને કાચી મીઠી અને રેત મેળવીને એવો ફર્શ તૈયાર કરવો જોઈએ. સૌથી બહેતર એ છે કે પશુને વાડાને અંદર બાંધી કરીને રાખવો જોઈએ. તેથી તેઓની મરજી તો તેઓ ઘૂમી ફરી શકે.

हाँ, आपके प्यारे प्यारे पेट्स के संग आज हमारे साथ हैं अंशुल उलाल जी और उनके घर के वो बहुत ही खास मेंबर जिनके नाम में ही एक रॉयल अंदाज है, सिम्बा। जी हाँ, सिम्बा एक इंग्लिश क्रीम गोल्डन रिट्रीवर है और केनल क्लब ऑफ इंडिया के चैंप

0: के साथ ढेर सारा प्यार नजर आता है। सिम्बा की फैमिली में एंट्री हुई बिल्कुल खास 24 मार्च 2020, लॉकडाउन से सिर्फ एक दिन पहले। सिम्बा घर आए और तब से लेकर आज तक उन्होंने परिवार का पूरा अटेंशन लॉक करके रखा है। तो चलिए जानते हैं सिम्बा के साथ जुड़ी वो कहानियाँ जो चैंपियनशिप से कहीं ज्यादा दिल के करीब है। तो अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग पेट्स के संग पर। कैसा फील कर रहे हैं सर आप?
1: बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज तनुषा जी, और ये दूसरा इंटरव्यू है आपके साथ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड पार्टिसिपेट।
0: जी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम सो हैप्पी टू होस्ट यू द सेकेंड टाइम इन आई थिंक एक वीक के अंदर हम दूसरी बार बात करें। तो थैंक यू टू SN रेडियो, थैंक यू टू यू फॉर ऑल द टाइम। एंड ये इंटरव्यू बहुत अलग होने वाला है। फर्स्ट इंटरव्यू थोड़ा सीरियस था, थोड़ा स्पिरिचुअल था, काफी गहरा था, और ये इंटरव्यू बहुत फन होने वाला है, बहुत फ्रॉलिकी होने वाला है, बहुत फैंटास्टिक होने वाला है। तो चलिए जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल आपसे, आपके प्यारे से सिम्बा के बारे में, किस तरह से सिम्बा आपके जीवन में आया, वो कौन सा पल था जब आपने डिसाइड किया कि सिम्बा को अपने जीवन में लाना है, और ये कैसे डिसाइड हुआ कि आपके पेट का नाम सिम्बा रखना है?
1: बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है तनुषा जी। तो सिम्बा मेरा गोल्डन रिट्रीवर है। बचपन से बहुत कहानियां सुनी थी, क्योंकि हमारे जो उड़लाल गांव है वहां पर कैटल का एक काउ शेड हुआ करता था हमारे घर में, और मेरे दादाजी जो अनंत राव उड़लाल है उनको एक उसमें से गाय बहुत पसंद थी, काली करके। उसमें बहुत सारे किस्से हुए हैं जहां पर उनको एक दूसरे घर में भेजा गया था और वो वापस आके वो कंपाउंड को छलांग मारकर वापस काउ शेड में आई थी, वो एक किस्सा है। दूसरा चीज था कि हमारे जो गुरुदेव है परिज्ञान आश्रम स्वामी जी, उन्होंने मेरे पापा को एक लैब्राडोर गिफ्ट किया था, ब्लैक कलर वाला। तो वो हमारे घर पे था, और उसके बाद रिश्तेदारों के घर पे जब मैं गया था तो उधर एक ब्लैक लैब्राडोर वो भी था जिसका नाम राजा था। तो जब मैं बच्चा था वो मुझे उसके पीठ पे सवारी करने के लिए भी देता था। तो ये सब जो इन्फ्लुएंसेस है बचपन की, तो बहुत गहरा असर हुआ कि वी शुड हैव अ पेट करके। तो जब छोटा था और अपार्टमेंट्स में रखने के लिए उतनी सुविधा नहीं थी पहले, तो पेरेंट्स ने बोला कि बड़े हो जाओ, एजुकेशन कंप्लीट करो, और जब टाइम आएगा तो तब सोच लेना पेट लेके आने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अभी पढ़ाई पर फोकस करके काबिल बनो, उसके बाद पेट ला सकते हो करके। तो एक बार मैं जब डिसाइड किया कि हमें एक गोल्डन रिट्रीवर चाहिए घर पे, क्योंकि बच्चे मेरी बेटी भी अवंतिका 5 साल की हुई थी, तो मुझे ऐसा था कि जो मुझे उस टाइम हम कर नहीं पाए, बच्चों को वो थोड़ा सोशलाइज करना चाहिए नेचर से, तो मुझे एक पेट लाना है करके बहुत मन में था इच्छा। तो फेसबुक पे देख के उसके बाद एक पिक्चर आया। मेरा मानना ये है कि जो पेट्स होते हैं वो फैमिली चूज करते हैं, फैमिली पेट्स को चूज नहीं करती। तो वो एक कार्मिक साइकिल होता है, वो हमारे जीवन में आके सब कुछ बदलते हैं। और ये से फिर मुझे एक पपी नजर आया, तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि मुझे यही चाहिए। और बचपन से पापा मुझे वो डॉग शोज में लेके जाते थे जहाँ पर ब्रीड स्टैंडर्ड क्या क्या नस्ल होते डॉग्स के, और उनको उनका देखभाल कैसा किया जाता है, तो वो सब थियरी पढ़ के उसके बाद वी डिसाइडेड ऑन सिम्बा. सो नाम कैसा पड़ा आपका सवाल है. तो माँ को कुछ इंडियन सवाल इंडियन नाम रखना था. तो हम सब लायन किंग के बहुत फैंस हैं. तो वो सिम्बा नाम हमें बहुत पसंद आया. और सिम्बा आप देखोगे तो हमारे जो विष्णु जी का अवतार है नरसिंह, उनसे भी नाम मेल खाता है सिम्बा करके. वो इंडियन नाम है. और सिम्बा देख

0: में एकदम लायन जैसा भी है देखने में एक्चुअली, तो ऐसे उसका नाम सिम्बा पड़ गया।
1: क्या बात है सर, क्या बात है। इस जवाब में इतने सारे और सवाल मुझे मिल गए और मैं बहुत ही इस थॉट को एको करती हूँ और आपसे बहुत इत्तेफाक रखती हूँ कि पेरेंट्स हमेशा बड़े होते हुए यही बोलते हैं कि पहले रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, पहले खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर सोचना इन सब चीजों के लिए। तो एक तरफ तो कहते हैं कि पहले कामयाब हो जाओ, नहीं काबिल बनो, कामयाबी अपने आप आएगी। तो अब आई थिंक एक और पेरेंट्स का एक पेट वो होना चाहिए कि पहले काबिल बनो फिर पेट लेके आना। तो मैंने पूरी लाइफ अपने यही सुना है एंड आई एम सो ग्लैड कि आप इतने काबिल बन सके, इतने कामयाब हो सके कि यू कुड एक्चुअली फुलफिल दिस ड्रीम ऑफ गेटिंग अ पेट इन योर हाउस। और सिम्बा बहुत ही खूबसूरती से आपके जीवन में आया, बहुत ही प्यारी स्टोरी आपने शेयर की, बहुत रिसर्च के बाद आपने उसे अपने घर में लेके आए, वो भी एक कमेंडेबल टास्क है। बिकॉज जनरली लोग एक इम्पल्सिव बाय कर लेते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन कर लेते हैं, जो बहुत गलत है मेरे मायने में, कि जब आप पेट लाने की एक डिसीजन लेते हैं तो आप एक बच्चा घर में ला रहे हैं और वो एक ऐसा बच्चा जो कभी बड़ा नहीं होगा। तो यू रियली जी तो यू रियली नीड टू बी वेरी वेरी वेरी श्योर ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग इन योर हाउस एंड व्हाई यू आर गेटिंग द पेट इन द हाउस एंड आर यू रेडी फॉर दैट। सो आई थिंक इट्स कमेंडेबल और यही हमारे शो का पर्पस है। सिर्फ पेट के बारे में बात करना इज वन पार्ट ऑफ इट, बट जागरूकता क्रिएट करना और पेट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है उनके बारे में लोगों को प्रिपेयर करना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस शोज पर्पस। आगे चलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड फन क्वेश्चन आज का ये है कि जब आप सिम्बा को अपने घर में लाए तो फर्स्ट टाइम जो उसका फर्स्ट डे था वो कैसा था, किस तरह के चेंजेस आपके घर में आए और कौन से ऐसे क्यूट मेमोरेबल मोमेंट्स हैं जो आप भुला ही नहीं भूल पाते हैं सिम्बा के साथ।
0: बहुत बहुत निराली सवाल है आपकी तनुषा जी। तो सिम्बा को हम कोविड के लॉकडाउन के एक दिन पहले लाए थे, ठीक है। वो तब 100 दिन का बच्चा था। बहुत अच्छे किस्से हैं क्योंकि मैं जब पहली बार देखने के लिए गया था सिम्बा को तो उसका एक आंख नीला हो गया क्योंकि वो अपने माँ के साथ कुछ खेल रहा था, कुछ मिसबिहेव किया उसने, तो माँ ने उसको एक पॉ से थोड़ा पैच कर दिया।

पेरेंट्स आते हैं वो बच्चों को अनकंडीशनल लव बहुत सिखाते हैं. और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो किसी चीज अगर पेट को अच्छा नहीं लगा या अपने सिम्बा को अच्छा नहीं लगा जो अवंतिका करती है, जो मेरी बेटी करती है, तो वहां से उठ के चला जाता है.

0: बहुत ही खूबसूरत गीत सर, थैंक यू सो मच इसकी फरमाइश के लिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग नए पेट पेरेंट्स बन रहे हैं, पेट्स को अपना रहे हैं, फॉस्टर पेरेंट्स बन रहे हैं, पेट्स अडॉप्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अवेयरनेस हो रही है। तो बिकॉज आप एक आई थिंक यू हैव बीन अ पेट पेरेंट सिंस 2020, सिक्स ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, तो आपके एक्सपीरियंसेस जी आपके एक्सपीरियंस से अगर आप नए पेट पेरेंट्स के लिए जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, पेट लाना चाहते हैं, फॉस्टर करना चाहते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस हो तो वो क्या होगी, पहला सवाल। और जनरली एनिमल्स की तरफ लोगों का जो बिहेवियर है, नॉट जस्ट योर पेट बट एक जनरल बिहेवियर टुवर्ड्स एनिमल, उसके लिए क्या आपकी सलाह होगी?
1: तनुषा जी, तो पहला एक बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए, अगर नए पेट पेरेंट्स बनना है, पेट को घर पे लाना है, जैसे मैंने आपको बोला कि उस पर बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, थियोरी समझो कि कौन सा ब्रीड है, उसकी फितरत क्या है, क्या वो गार्ड डॉग है, क्या वो फैमिली डॉग है, उसको कैसा सेटिंग चाहिए, ऐसा बहुत सारे आर्टिकल्स हैं कि कैसे कौन सा ब्रीड सूटेबल होता है, वो एक चीज है। दूसरी चीज है क्यों चाहिए आपको पेट, ओनली इफ यू आर 200% कमिटेड कि पेट लाके मैं अपना जो करंट फॉर्मेट है बदलना चाहूंगा, या हम एक हमारे पास पेट था लेकिन वापस मुझे लेके आना है और आई वॉन्ट टू बी having that same lifestyle, अगर 200% commitment है तभी वो decision पे आगे बढ़े, वरना pet लाने की ऐसी कुछ जरूरत नहीं होती। तो वो एक थोड़ा उसके ऊपर सोच और विमर्श करना बहुत जरूरी है। जब adoption की बात आते हैं तो बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव थॉट है, लेकिन जब अडॉप्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि उसका बैकग्राउंड क्या था, वो बच्चे का ऐसा फितरत क्या था, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो डॉग्स रहते हैं वो डिफॉल्ट फेथफुल रहते हैं। जो सिचुएशन, अगर बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हमने देखी हैं जहां पर उनका बैकग्राउंड इतना खराब होता है कि दैट पुअर बेबी इज एक्चुअली फोर्स्ड टू थिंक कि लोग मुझे हार्म ही करेंगे करके, तो वो जो माइंडसेट है वो चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और वो माइंडसेट को चेंज लाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगता है। तो यू नो नाउडेज यू हैव लॉट ऑफ दिस अडॉप्ट कीजिए करके वो ड्राइव होते, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बट वी हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड कि वो डॉग का क्या बैकग्राउंड था, क्यों ऐसा हुआ उनके साथ, और देन मेक योर लाइफ स्टाइल इन सच अ वे दैट यू कैन वर्क विद द डॉग टू कम टूवर्ड्स अ पॉजिटिव चेंज। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऐसा मैंने देखा है कि जैसे कोई डॉग देखेगा तो इमीडिएटली जाके उसको पेट करना चालू कर देते हैं, मतलब आपको ओनर को पूछना चाहिए एज अ फॉर्मेट, पहले ओनर से पूछे वो डॉग फ्रेंडली है कि नहीं फ्रेंडली है, अगर उसको सोशलाइज नहीं किया गया है और वो गार्ड डॉग है, आपका जो भी एक्शन है वो ऐसे सतर्क रहेगा कि आप या तो उसको हार्म करेंगे या तो ओनर को हार्म करेंगे, तो उसका वो जो गार्डिंग टेंडेंसी है वो डिफॉल्ट ट्रिगर हो जाएगा। तो वो एक चीज है, कभी कभार हम लोग ऐसे देखते हैं लिफ्ट में होता है, सडन पैनिक हो जाता है।

0: सब जन इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसा डॉग अटैक कर रहा है करके ये होता है, ऐसे सब होता है। लेकिन उसमें उसका एक जो, जब मैं किनैन बेविरिस से बात करता हूँ और मेरे दोस्तों से बात करता हूँ, तो वो एक ही बोलते हैं कि जो डॉग रहता है उसको ट्रिगर होता है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी को स्टडी करता है, आपका जो ऑरा है वो स्टडी करता है। अगर आप पैनिक करोगे तो वो भी पैनिक करेगा। तो ऐसे क्लोज स्पेस में जब आप पैनिक डेमोन्स्ट्रेट करते हो, उनका भी जैसे हम लोग बोलते हैं फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स, ऐसे बोलते हैं कि या तो मुझे भागना है या तो मुझे उसको डील करना है, मतलब आई हैव टू बी एग्रेसिव टुवर्ड्स इट। ऐसा ट्रिगर हो जाता है, हर केस में नहीं होता, काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर द डॉग्स हैव अटैक्ड ऑल्सो फॉर सम रीजन, फॉर रीजंस अननोन, उसका स्टडी अलग से होना चाहिए। लेकिन ओनर्स को या पेट पेरेंट्स को ये जानना, बहुत जरूरी है कि उनके अगर बच्चे को ऐसा फितरत है जो स्ट्रेंजर से अनकंफर्टेबल है, या कुछ रास्ते में जाते हुए कुछ खाने की आदत है, तो एक मजल मिलता है जो मुंह पे डाल सकते, जो डॉग की सेफ्टी के लिए भी अच्छा है और आसपास के लोगों के लिए भी सेफ्टी का एक यंत्र है। तो वो वैसा डाल के उसको लेके जा सकते वेयर इट विल बी कंड्यूसिव ऑन बोथ साइड्स, ऐसा होता है। तो मेन ये है कि बॉडी लैंग्वेज, सो डॉग्स जो होते हैं वो आदमी का जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका कैसा बर्ताव है, वो कैसे अपने आप को कंडक्ट करता है, उसमें काफी सारे जजमेंट्स लेता है कि मैं उसको अपने सर्कल में आने दूं या मना करूं करके। सो जब आने दूं होता है तो आप देखोगे कि डॉग के ईयर्स जो है, कान जो है, वो पीछे चले जाते हैं, मतलब वो रिलैक्स है और वो इज वेलकमिंग यू। यस, इफ द ईयर्स आर अलर्ट, तब आपको पेशेंस से जाना है। ऐसे नहीं कि डॉग दिखा तो जाके उसको कडल कर दे। हम आदमी को ऐसा करते हैं क्या, आदमी ऐसा अप्रिशिएट करेगा क्या? वैसा वैसा सोचना चाहिए। और जब अपार्टमेंट में रहते हैं हम लोग, एक चीज जो हम लोग घर पे करते हैं कि हमारा अपार्टमेंट तो एकदम डॉग फ्रेंडली है। कल परसों में एक ऐसा किस्सा हुआ कि हम लोग नीचे थे, थोड़ा दरवाजा खुला था तो सिम्बा भाग के नीचे आ गया। वो मुझे ढूंढते हुए सीढ़ी से नीचे आया और मैं लिफ्ट से ऊपर आया, तो एक ऑलमोस्ट एक 5 मिनट के लिए ही वॉज ऑफ द लीश इन द अपार्टमेंट। तो अपार्टमेंट लोगों ने पिक्चर डाला कि ये एक डॉग यहाँ पर है, तो मैंने अपोलोजाइज किया क्योंकि अपार्टमेंट के रूल्स के तहत डॉग्स को लीश पे रखना एक रूल होता है। तो वो बोलते हैं कि इतना वेल बिहेव डॉग है सर, सॉरी क्यों बोल रहे हो, अच्छा हुआ आपको मिला, वो वापस घर पे आ गया करके ऐसा। एंड जब मैं उसको ऊपर लेके आ रहा था, लिफ्ट में दो जन थे, तो मैंने उनको वही चीज पूछा, आर यू कम्फर्टेबल, क्योंकि मेरे पास लीश नहीं था उसको पकड़ने के लिए। वो मेरी सुनेगा, वो एक कॉर्नर में जाके बैठेगा, लेकिन अगर वो कम्फर्टेबल नहीं है तो वो एक ऐसा सिचुएशन है जो मैं उसको लिफ्ट में ना लाऊं वही अच्छा है। तो मैंने उनको पूछा आर यू कम्फर्टेबल विद द डॉग, वो बोले नहीं। तो मैं बाहर आया, लिफ्ट में उनको जाने दिया, फिर उसको लेके हम लोग वापस घर पे आए। तो ऐसा अगर 2 मिनट हम लोग संतुलन बना के इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करके अप्रोच लेके जाए तो सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा मतलब नुस्खे हैं जो हम लोग ले सकते हैं फॉर गुड एनवायरमेंट।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बहुत अगेन वंस अगेन बहुत नुआंस तरीके से, बहुत कीनली ऑब्जर्व करके आपने हमारे साथ साझा किया। ये सभी पॉइंट्स आज से पहले हमारे शो पे कभी डिस्कस नहीं हुए, जैसे कि आपने सबसे पहले हमें बताया कि किस तरह से जो डॉग्स हैं वो जब आप अडॉप्ट करते हैं तो बहुत सारे डॉग बहुत ट्रॉमा ड्रिवन होते हैं, उनको पता नहीं किस तरह क्या उनका पास्ट रहा होता है। तो अगर आप उसके लिए रेडी नहीं हैं, अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि उसको घर लाके उस तरह से उसको कंफर्टेबल कर सकें, उसको वापस उस ट्रॉमा से निकाल सकें, उसके साथ इतना टाइम स्पेंड कर सकें कि वो एक नॉर्मल सिचुएशन में आ सके वो पेट, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, अपने साथ भी, अपने परिवार के साथ भी।

रिस्पेक्ट के साथ भी, क्योंकि आप क्लियरली रेडी नहीं है। हमारे साथ एक गेस्ट थे जय जय मैम करके, जय जय सांघा करके पंजाब से, उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनने एली को अडॉप्ट किया था, उनकी जो पेट थी, और कैसे वो ट्रॉमा स्ट्रक थी, कैसे वो परेशान थी, उसका जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही डिस्टर्ब था। बट जब वो घर आई तो उन्हें और उनकी फैमिली ने इंश्योर किया कि उन्होंने उतना टाइम उसके साथ स्पेंड किया टू गेट हर आउट ऑफ दैट स्टेट ऑफ शॉक एंड ट्रॉमा, एंड देन इवेंचुअली थिंग्स गॉट स्मूथ। तो I think this is a very important point that you raised today, Anshu sir. Thank you so much. और दूसरा ये point कि आप जब pet को देखते ही चले जाते हैं pet करने, cuddle करने, वो बहुत गलत है एक approach, because आप इंसान के साथ सच में ये नहीं करेंगे, और अगर आप pet के साथ ही करते हैं तो आप invite कर रहे हैं trouble, and then you cannot blame the dog or the pet कि उन्होंने attack किया, because उनका तो एक reaction है, they are tuned that way, they are insecure, they are not like humans, उनके पास और कोई तरीका नहीं है अपने आप को defend करने का। तो I think instead of blaming the dog attacks and blaming the dog, you should actually check your behavior कि आप क्या कर रहे हैं के अराउंड, और किस यू नो इन्फॉर्मेशन से जा रहे हैं किसी भी पेट के साथ, कितनी प्रिपेयर्डनेस के साथ आप उसको अप्रोच कर रहे हैं। इट इज लाइक आई सेड, आई वुड री इन्फोर्स द पॉइंट कि पेट एक म्यूज नहीं है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है। यू नीड टू बी एज केयरफुल एज मैनर्ड अराउंड अ पेट एज यू एक्सपेक्ट द पेट टू बी अराउंड यू। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किए, बहुत कंड्यूसिव एनवायरमेंट के बारे में आपने बात किया। तो इन्हीं बहुत इंटेलिजेंट टॉक्स के बीच, बहुत जरूरी टॉक्स के बीच, हम सुनेंगे एक और बहुत फन सॉन्ग, बहुत फन फिल्म से, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, चट्टे बट्टे।

0: बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग हमने सुना. थैंक यू सो मच अंशुल सर एक और बहुत ही अमेजिंग चॉइस के लिए. आगे चलते हैं. ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि आपने अपने पेट से अगर कोई स्पेशल लाइफ लेसन लर्न किया है तो वो क्या है.
1: तो तनुषा जी, डॉग्स जो रहते हैं ना वो एकदम पैक एनिमल्स रहते हैं. तो पैक एनिमल्स जब हम लोग बोलते हैं उनका एक्चुअली एवोल्यूशन आप डॉग्स का देखोगे तो वो भेड़िए की जो नस्ल है उससे ताल्लुकात तो रखती है, ऐसा रिसर्च बोलता है. तो उनमें एक हायरार्की होता है, एक फॉर्मेट होता है जहां पर एक अल्फा होते हैं, वो पूरे ग्रुप को बताते हैं. तो आप हमारे घर का या इंडियन सिस्टम फैमिली फैब्रिक को अगर आप देखोगे तो पिताजी उसमें अल्फा रहते हैं, पूरे परिवार को सातवें रखते हैं. और उसमें क्या होता है, कुछ लीडरशिप क्वालिटीज भी रहते हैं. जब सब पैक एक साथ जाते हैं तो वो जो लीडर होते हैं वो पूरे पैक को एक साथ लेके जाते, कोर्स करेक्ट करते हैं, एक दिशा की तरफ लेके जाते हैं. वो एक सीख मिलती है कि सबको साथ में रखू, सबका अच्छा होना चाहिए. अनकंडीशनल लव, ओके, दैट इज ऑलवेज. आप किसी से भी पूछो वो आपको बोलेंगे कि डॉग को देखते अनकंडीशनल लव नजर आता है. कुछ भी समस्या हो, कैसा भी दिन रहे, उनका प्रेम अपनी जगह होता है. वो एक चीज है. एक चीज जो मुझे बहुत, मेरा पर्सनल थॉट है ये, बट आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू एंड द लिसनर्स. गॉड और डॉग में जो अल्फाबेट्स है वो सेम है, रिवर्स में है. ओके, गॉड और डॉग में रिवर्स में है. लेकिन डॉग अपने को वो सिखाता है कि जब मास्टर है उनको, उनके तरफ हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए. जो वो दिव्य व्यक्ति है या पावर है, आप उसको जो भी नाम आपको देना चाहिए आप दे सकते हो, लेकिन उसका तत्व एक ही है. तो जब उनके पास जाना है तो कैसे जा सकते हैं. हमारे जो गुरु दत्तात्रेय है, तो आप उनमें देखोगे कि वो हमेशा, उनके पीछे एक गाय रहता है, उनके पास चार डॉग्स रहते हैं. एक्चुअली मैंगलोर में जब हम लोग कुछ स्पिरिचुअल फंक्शन के लिए गए थे, तब मेरे एक बहुत ही विद्वान वहां पर जो बुजुर्ग थे, उन्होंने हमें बोला था कि ऐसा बोला था, मैंने उसके ऊपर ज्यादा पढ़ाई नहीं किया है, मैं वो डिस्क्लेमर लगाना चाहूंगा, लेकिन गुरुदेव दत्तात्रेय के पास जो चार यू नो डॉग्स है वो एक्चुअली वेद है, चार प्रकार के वेद है, ऐसे बोलते हैं. तो जब हमें उनसे जो सीख मिलती है, ऐसा हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग दशावतार में देखते हैं उसमें भी ह्यूमन एनिमल का जो समागम है वो आता है. तो जब हम पेट्स के साथ रहते हैं तो उसमें हमें पॉजिटिविटी, दूसरों को केयर कैसे करें, दूसरों को प्यार कैसे देना है, गुरु या जो हमारे भगवान है उनकी सेवा कैसे करना चाहिए, अनकंडीशनल लव कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, वो सब चीजें हमें सीखने को मिलती है. उनका कैसा सुनना है. इफ यू सी, हम जो रिकॉल बोलते हैं या वन मास्टर डॉग बोलते हैं, जो हम बोलेंगे वो करेगा. अगर वो ट्रेंड है, अगर उसको वो मैच्योरिटी आ गई है, तो वो हमारी बात सुन के वो करेगा जो हम उनको बोल रहे करने के लिए. ऐसी क्वालिटीज अगर हम

0: आपने लेके आए तो भगवान गुरु और हमारे जो शास्त्रों में लिखा है वो हमें अर्जित करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा वो कनेक्शन फ्रीक्वेंसी और कम्युनिकेशन एकदम एक्टिव और स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने ये पॉइंट्स गिनाए हमें। कितना स्पिरिचुअल है ये एक्सपीरियंस टू हैव अ पेट एंड टू यू नो रेज अ पेट इन योर हाउस। कितना कुछ आप सीख सकते हैं जिस तरह से आपने बताया, अनकंडीशनल लव, सरेंडर एंड दैट यू नो दैट वन मास्टर का अप्रोच, दैट लॉयल्टी, बहुत ही खूबसूरत सर। आगे चलते हैं, आज का मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अगर आपको आज बोला जाए कि आप सिम्बा के बिना अपना जीवन इमेजिन करें तो वो कैसा होगा, कभी इमेजिन करा है आपने?
0: मैं नहीं कर पाऊंगा शायद क्योंकि ऑलमोस्ट जीवन काल में मेजॉरिटी बिना पेट्स का रहा हूँ। मतलब घर पे एक्वेरियम हुआ कर है और हुआ करता था बचपन से, लेकिन ऐसा डॉग या कैट को की देखभाल करना वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसा मैं फिलहाल तो इमेजिन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इन दी सिक्स इयर्स इतना कंडीशन हो गया हूँ सब घर पे भी कि सिम्बा की तरह करके दो दो मिनट में सब देखते हैं और वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके कैसे भी नींद में हो या सो रहा हो या रिलैक्स कर रहा हो या खाना खा रहा हो वो आके बताता है, दिखाता है कि मैं इधर हूँ सब ठीक है करके, ऐसा वो करता है। तो ऐसा शायद मैं नहीं सोच पाऊ, लेकिन ऐसा होता है जैसे हम लोग बोलते हैं कि जिसका ये है तो उनका एक टाइम रहता है करके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो सीख मिलती है वो अभी कंटिन्यूटी में जाएगा और आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और हमारे परिवार में तो ऐसा ही है कि हमारे पास एक पेट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा करके।
1: ब्यूटिफुल सर, ब्यूटिफुल, और इसको भी आपने कितना स्पिरिचुअली एक कॉनोटेशन दिया कि कंटिन्यूटी रहती है जो सीख वो दे जाते हैं, भले हर इंसान हर जीव की एक लाइफ स्पैन है, बट जब वो जाते हैं तो उनकी जो सीख है, उनकी जो यादें हैं, उनके साथ बिताए हुए पल जो हमें सिखाते हैं वो एक कंटिन्यूटी में जाते हैं, हमारे साथ इटर्निटी तक चलते हैं
0: और वो देखते हैं। तनुषा जी, जैसे मेरे दोस्तों के पास जो डॉग्स थे उनका जब टाइम आया वो चले गए, सबका जब टाइम आता है वैसा होता है, वो एक रीत है, या हम लोग जैसे शास्त्र में लिखते हैं जो जन्म है उसका एक अंत आना एक एक ट्रूथ है, वो एटर्नल ट्रूथ है करके बोलते हैं। लेकिन इनके जो गाइडिंग स्पिरिट है या एंजल है हम लोग बोलते हैं, वो हमेशा ये देखते हैं कि अपने लोग अपना फैमिली कैसे है, और वो एनर्जीज है ना, कभी कभार मैंने कई सारे दोस्तों के लाइफ में देखा है कि दूसरा एक पप्पी आएगा और सेम उसका कनेक्शन वो प्रीवियस वाले डॉग के साथ रहेगा और वो सेम पॉजिटिविटी वापस आएगा और उनके पास एक एक नया चैप्टर रहेगा, तो एक चैप्टर एक नाम पे रहेगा, दूसरा चैप्टर दूसरे नाम पे रहेगा, लेकिन एक कंटिन्यूटी है, वही पॉजिटिविटी है और वही चलता जाएगा, ऐसा है।
1: एब्सोल्युटली सर, so beautifully put and so beautifully concluded। again spirituality पे हम इस episode को conclude कर रहे हैं क्योंकि ultimate motive वही है, ultimate destination वही है, और pets के साथ आपकी journey भी बहुत spiritual होती है, मेरा मन से ये मानना है, और आज इस thought को reinforce किया है अंशुल जी ने अपनी खूबसूरत ख्यालों के साथ, अपनी खूबसूरत experiences के साथ। थैंक यू सो मच अंशुल सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके प्यारे से सिम्बा के बारे में इतनी प्यारी बातें साझा करने के लिए, इवन पेट केयर के बारे में, एनिमल केयर के बारे में इतना कुछ हमारे साथ

लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए मांगता ही रहूंगा, समझ नहीं आ रही बात। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि चलो, जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उसको कुछ ना कुछ देगा जरूर। लेकिन अब उसके दिमाग में ये सवाल उठ गया कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में भला क्या दे देगा दूसरे को। ये बात सोचते हुए पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन जब स्टेशन के पास बैठा हुआ था वो, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ गई जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे, जंगली फूल थे। उसने सोचा, अच्छा क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। तो उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिन बीते, उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक लोग उसे भीख देते ही रहते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो गए तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही होने लगा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, सेठ जी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दे दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उन्हें दिए। इस सेठ को यह बात बड़ी पसंद आई। सेठ बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल देगा। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर हो सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक साल गुजर गया। उसी स्टेशन पर दो लोग सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक

सेठ बोला, भाई मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम लोग दो बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी दो बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में हूं कौन। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से बस दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया।

छाया में होती है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान है वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी।

यहोवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े

ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। एक मुद्दत से मैंने न तो मोहब्बत बदली और न ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ पर क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया है मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे।

पीना सीखा, कभी कभी सिगरेट, फिर धीमे धीमे गांव की अंधेरी गलियों में शराब पीना सीखा। देर रात तक गांव की अंधेरी गलियों में बैठकर मैं ये जानने की कोशिश करता था कि कैसे धुएं के छल्ले बनते हैं, बादलों का धुएं से क्या संबंध है। शायद यहीं से कविताओं ने मेरे भीतर जगह बनानी शुरू की होगी, लेकिन तब मैं जानता नहीं था कि कविता भी कोई चीज होती है। हालांकि अब भी मुझे नहीं पता कि कविता क्या होती है, लेकिन मैं उसे बार बार लिखकर समझने की कोशिश करता रहता हूं। मैं अब तक वो कविता नहीं लिख पाया हूं जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है। खैर, मैं असल कहानी पर आता हूं। तो उन दिनों उस नाजुक उम्र में मैंने शराब, सिगरेट और कुश्ती जैसी सारी सख्त चीजें की। इनमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उस वक्त नहीं की जाना चाहिए थी, लेकिन उम्र हमेशा मुझे अपने से आगे की ओर ही धकेलती रही। मैं उन दिनों जंगल, घास, फूल, कांटे, गायें, बेल, तालाब, कुओं और फसलों की संगत में रहता था। मुझे लगता था एक दिन इनमें से ही कुछ बन जाऊंगा। मैं किसी दिन घास बन जाऊंगा और हवा के साथ रहूंगा। कभी लगता मैं कोई कुआं हो सकता हूं जिसका पानी खेतों में जाएगा। कई बार सोचता था कि हो सकता है मैं बड़ा होकर कोई फूल बन जाऊं जो किसी दिन किसी देवता के सर पर रखा जाऊं, या कोई सुंदर स्त्री के बालों के जूड़े में

सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो तुम चल सको तो चलो। इधर उधर हैं कई मंजिलें, इधर उधर हैं कई मंजिलें, जो तुम चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो तुम ढल सको हाँ तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलती है जिंदगी, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो।

कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहां कोई किसी को नहीं देता रास्ता, जो मुझे गिरा कर चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

हेमंत कुमार मुखर्जी जी का जन्म 16 जून 1920 को बनारस यानी वाराणसी में हुआ था। उनके 3 भाई और 1 बहन थी। हालांकि उनका जन्म बनारस में हुआ, लेकिन उनका पूरा परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बहारू का रहने वाला था।

जब वो छोटे थे उनका परिवार कोलकाता में स्थानांतरित हो गया। वहां वो बड़े हुए और भवानीपुर के मित्रा इंस्टीट्यूशन स्कूल में पढ़ाई की। इंटरमीडिएट से स्नातक होने के बाद उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आइए सुनते हैं उनका डायरेक्ट किया हुआ ये गीत।

0: संगीत में हेमंत कुमार जी की रुचि जल्द ही शुरू हो गई। उन्होंने अपना पहला गाना 1933 में ऑल इंडिया रेडियो पर गाया। उस समय वो केवल 13 वर्ष के थे। हालांकि ये कभी साफ नहीं हो पाया कि हेमंत कुमार गायक बनेंगे। उनकी बेसिक ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में थी, लेकिन अन्य रास्ते अपनाने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया। शुरू में उन्होंने लेखन में अपना हाथ आजमाया, यहां तक कि वो एक प्रमुख बंगाली पत्रिका में एक लघु कहानी प्रकाशित करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें समझ में आ गया कि उनका बिजनेस संगीत है। आइए सुनते हैं उनका डायरेक्ट किया हुआ ये गीत।
1: जरा नजरों से कह दो जी।

हेमंत कुमार जी के पास संगीत की अच्छी ट्रेनिंग थी, उनके अनेक टीचर्स थे। ऐसा लगता है कि उनकी ट्रेनिंग का बड़ा हिस्सा शैलेश दत्त गुप्ता के अधीन रहा। उन्होंने फणी बनर्जी के अधीन भी अध्ययन किया और कई लोगों से ट्रेनिंग ली। 1937 में उन्होंने अपनी पहली डिस्क रिकॉर्ड की थी। फिल्म पार्श्व गायक के रूप में उनका करियर बंगला फिल्म निमाई संन्यास से शुरू हुआ, जो कि 1941 में रिलीज हुई थी। उसके बाद उन्होंने कई बंगाली फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया। आइए सुनते हैं ये गीत।

वो एक संगीत निर्देशक के रूप में अपनी क्षमताएं दिखाना चाहते थे, तो वो पहली बार 1947 में बंगाली फिल्म अभियत्री में ऐसा करने में सफल रहे।

कई संगीत निर्देशकों ने उनको पहचानना शुरू कर दिया था। 1940 के दशक के अंत में हेमंत ने हेमेन गुप्ता नामक निर्देशक के लिए संगीत रचना शुरू की। बस यहीं से उनका जीवन बदल गया। आइए सुनते हैं उनका डायरेक्ट किया हुआ ये गीत।

हेमेन गुप्ता को हेमंत कुमार का संगीत पसंद आया और उन्होंने उन्हें बॉम्बे बुलाया। बॉम्बे में फिल्म बन रही थी आनंद मठ। यहां हेमंत कुमार को इस फिल्म में संगीत देने का मौका मिला और किस्मत बदल गई।

1960 के दशक में हेमंत कुमार बहुत सक्रिय रहे, फिर 1970 के दशक में उनके प्रोडक्शन में काफी गिरावट आई। उनकी प्रोडक्शन कंपनी गीतांजलि पर 14 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया जो चुकाया ना जा सका। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी रहीं। 1980 के दशक में उनकी तबीयत खराब होने लगी। आइए सुनते हैं उनका ही ये गीत।

हेमंत कुमार यानी हेमंत दा की आवाज सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू देती थी। सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

0: छुप गए सारे नजारे और क्या बात हो गई।
1: 70 और 80 के दशक में जब LP कहा जाता था तो उसे लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स के साथ साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी समझा जाता था। इसका एक सीधा मतलब यह भी है कि उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स निकलते थे उनमें से बहुतायत LP पर बतौर संगीतकार मौजूद होते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत कोड़ालकर और प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के जिस अति लोकप्रिय युग का सृजन किया वो हिंदी फिल्मों के लिए आज धरोहर जैसा है। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ ये गीत।

अब इस बारे में तो कोई शक ही नहीं किया जा सकता कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी शायद अकेली ऐसी जोड़ी रही है जिसने लोकप्रियता के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जहां अपने आरंभिक दिनों में शंकर जयकिशन की धुनों से प्रभावित थे, वहीं उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में कार्य करने से पहले कुछ दिनों तक कल्याण जी आनंद जी के सहायक के तौर पर काम किया। स्वतंत्र रूप से संगीतकार बनने से पहले दोनों फनकार दूसरे बड़े संगीत निर्माताओं के लिए साज बजाया करते थे। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

लक्ष्मीकांत एक बेहतरीन मैंडोलिन वादक थे, जबकि प्यारे लाल जुबिन मेहता से बुरी तरह से प्रेरित होकर वियना जाकर एक वायलिन वादक का करियर चुनने का मन बना चुके थे। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में बनी नागिन के गीत जादूगर सैया छोड़ मेरी बैया और सचिन देव बर्मन की लाजवंती के कोई आया धड़कन कहती है मैं लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन बजाया था। आइए सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

फिल्म इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं। गौरतलब बात है कि प्यारे लाल के पिता राम प्रसाद एक बेहतरीन वायलिन कलाकार थे, जिनसे कल्याण जी, राजेश रोशन और हृदयनाथ मंगेशकर भी वायलिन और वेस्टर्न म्यूजिक के नोटेशंस सीखने जाते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाद्यों को सजाने की सर्वाधिक रचनात्मक शैली LP की बनाई धुनों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। आइए सुनते हैं उनका बनाया ये गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम आज के कलाकार में।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को

0: फासले पल भर में मिटा देता है। जब फोन की घंटी बजती है और कोई सुनने वाला अपने दिल की बात साझा करता है तो लगता है जैसे एहसासों का एक नया पर्दा उठ रहा हो। हमारे शो, हमारे प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक के इस एपिसोड में आज फिर हमने अपने कुछ बेहद अजीज दोस्तों से सीधे फोन कॉल पर जुड़ने वाले हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनका पसंदीदा गजल गायक कौन है, उनकी दिल पसंद गजल कौन सी है और उस नगमे से उनकी जिंदगी का कौन सा हसीन लम्हा जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस सुरीली शाम का आगाज करते हैं और मिलाते हैं अपने आज के सफर की पहली कॉल। ट्रन ट्रन।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो आलोक जी।
2: हेलो आशी जी,
1: कैसे हैं आप?
2: बहुत बहुत बढ़िया, और अब और बढ़िया हो गए।
1: आलोक जी, हमारे फरमाइशी प्रोग्राम में मैंने सोचा कि आपकी अब एक बार फिर से फरमाइश की गजल सुनाई जाए हमारे दोस्तों को, तो इसलिए मैंने आपको फोन किया है। तो आप हमें ये बताइए, हमारे सुनने वालों को भी, कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
2: बिल्कुल बिल्कुल आरती जी। तो आरती जी, सबसे पहले तो मेरा आदाब कबूल फरमाएं आप और चानी।
1: बहुत बहुत आदाब आपको।
2: और उसके बाद आपको दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रेडियो एसएन और रेडियो टाटिया भील पर आपका कार्यक्रम अल्फाज से एहसास तक सचमुच आपके नाम को साबित करता है। आपकी मखमली हल्की सी हस्की सी आवाज गजलों के लिए जैसे खास तौर पर बनाई गई, और उससे आपकी खूबसूरत शायरी और गजलों का बेहतरीन सिलेक्शन हर एपिसोड को एक यादगार महफिल बना देता है। अगर आप इजाजत दें तो एक शेर अर्ज कर दूं, आपकी शान में पेश कर दूं।
1: आपने इतनी तारीफ कर दी है, अभी आप शेर भी सुनाएंगे?
2: अरे तो फिर आप, मैं अपनी पसंद का गजल गायक भी तो बता रहा हूँ, वो जो मैं हर किसी को नहीं बताता।
1: ठीक है,
2: ठीक है ना। तो आरती जी, जब लफ्ज आपकी आवाज का आंचल ओढ़ लेते हैं
1: जी,
2: तो गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। गजलों की खासियत है।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इससे अच्छा और कोई क्या बोल सकता है? मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार।
2: चलिए चलिए, तो फिर हम अब आपकी जो फरमाइश थी कि मैं अपने फेवरेट गजल गायक के बारे में बात करूं, तो अब उनके बारे में बात कर लेते हैं।
1: जी जी जी, बताइए।
2: देखिए, मेरी पसंद की बात करूं तो मेरे सबसे पसंदीदा गजल गायक हैं तलत महमूद साहब।
1: ओके।
2: हालांकि बाद में जगजीत सिंह, पंकज उदास, अनूप जलोटा, चंदन दास, सब बहुत अच्छे अच्छे गजल गायक आ गए, लेकिन ये हमेशा है मेरे

0: वाह क्या बात है। अभी आपने सुना जयपुर से हमारे रेडियो SN के बेहद सीनियर आरजे, जाने माने पॉडकास्टर और यूट्यूबर आलोक जी को। आलोक जी की अपनी आवाज में एक खास जादू है, लेकिन जब बात उनकी अपनी पसंद की आती है तो उन्होंने गजल गायकी के शहंशाह तलत महमूद साहब का चुनाव किया। फिल्म जहां आ रहा का ये अमर नगमा, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। और तलत साहब की आवाज़ का वो रेशमी कंपन, थरथराहट वाकई रूह को एक अजीब से सुकून से भर देता है। आलोक जी, आपकी इस नफीस पसंद ने आज के हमारे प्रोग्राम का आगाज बेहद संजीदा और दिलकश बना दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, अब मिलाते हैं आज की अपनी दूसरी कॉल और देखते हैं कि कौन है उस तरफ। ट्रिन ट्रिन।
1: हेलो
2: हेलो हेलो हेमंत जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ। आप, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको?
2: हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक तरीके से आ रही है। तो हेमंत जी, हम अपना गजल का फरमाइशी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मुझे आपका भी ख्याल आया, बिकॉज SN फैमिली के तमाम जितने भी हमारे कलाकार लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, मैं एक एक करके सबको कॉल करके उनकी पसंद की गजल हम सब लोग अपने दोस्तों को सुनाएंगे। तो हेमंत जी, मुझे आप ये बताइए कि आपकी पसंद का गजल सिंगर कौन है?
1: जी आरती, मैं गजलों और गजलें सुनता हूँ, गजलें मुझे बहुत पसंद है, और मैं गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह जी, पंकज उदास साहब, इनकी भी गजलें सुनना पसंद करता हूँ। मेरे फेवरेट सिंगर है जगजीत सिंह साहब, उनकी गजलें मुझे बहुत अच्छी लगती है, दिल को छू लेने वाली गजलें होती हैं उनकी। बहुत अच्छा म्यूजिक होता है, बहुत अच्छे लिरिक्स होते हैं, इसलिए मुझे जगजीत सिंह साहब की गजलें बहुत पसंद है।
2: तो हेमंत जी, ये बताइए हमारे दोस्तों को कि आपको जगजीत सिंह साहब की, वैसे तो बहुत सारी गजलें हैं जो सबको बहुत पसंद होंगी, पर कोई एक खास गजल आपको जो आपकी फेवरेट हो?
1: जी आरती जी, मुझे उनकी जो गजल है, जगजीत सिंह साहब और चित्रा सिंह जी के गाये हुई गजल है ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, ये गजल बहुत ही पसंद है। ये 1987 में फर्स्ट टाइम आई थी ये मूवी, आज

0: न्याय की ये गजल लिरिक्स इसके लिखे हुए हैं सुदर्शन फाकिद साहब ने।
1: बिल्कुल
0: जी, और बहुत ही सुंदर कुछ छू लेने वाली गजल है,
1: बाकी बहुत बहुत खूबसूरत। तो आपको क्यों पसंद है ये इतनी है मन जी?
0: जी, इसके जो लिरिक्स है बहुत ही अच्छे हैं और जगजीत सिंह साहब और चित्रा सिंह जी ने इसे बहुत ही अच्छे से गाया है। ये गजल सुनकर हमें अपने बचपन की याद आ जाती है, और क्योंकि मैं एक स्मॉल टाउन बैकग्राउंड से हूँ, विलेज बैकग्राउंड से हूँ, तो जो उसमें जो भी उसमें लिखा गया है लिरिक्स में, मैं उसे कनेक्ट महसूस करता हूँ। जैसे उसने लिखा है, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तिकली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूले से गिरना वो गिर के संभलना, ये वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। बहुत ही सुंदर लिरिक्स है,
1: बहुत सुंदर।
0: मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो गुड़िया जिसे बच्चे कहते थे ना, बहुत ही अच्छी, अपने बचपन की याद आ जाती है ये गजल सुनकर।
1: बहुत खूबसूरत आपके तासुरात हैं इस गजल को लेकर, आपके एहसासात अपने सारे बचपन के, अपने शहर के, अपने गांव के इसके साथ जुड़े हुए हैं, और आप इन बोलों के साथ अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है हेमंत जी। तो सुनते हैं फिर हमारे सब दोस्तों के साथ मिलकर आपकी ये नायाब पसंद की गजल, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू आशीष जी, थैंक यू।

0: आहा, नागपुर से हमारे बहुत ही खास दोस्त हेमंत नेसरे जी की बातें सुनकर तो ऐसा लगा जैसे वक्त पीछे की ओर बहने लगा हो। हेमंत जी का बचपन गांव में बीता है और जब उन्होंने इस गजल के मिसरे कड़ी धूप में घर से निकलना, वो चिड़िया, वो तितली, वो जुगनू पकड़ना अपनी आवाज में सुनाए तो वो अपने अतीत से पूरी तरह जुड़ गए। जगजीत सिंह साहब और सुदर्शन फाकिर साहब की ये रचना सिर्फ एक गजल नहीं है बल्कि हम सबके बचपन का एक खूबसूरत दस्तावेज है। हेमंत जी, आपकी इस भावुक और मासूम याद ने महफिल में एक मीठा सा दर्द भर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आइए दोस्तों, अब रुख करते हैं अगली कॉल का।
1: हेलो
2: हेलो अनुप्रीता मैम।
1: हेलो आरती जी, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप?
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। How are you doing? आप कैसे हैं?
2: मैं तो बस आजकल अपने प्रोग्राम को बनाने में ही बिजी रहती हूँ। मेरा तो सारा टाइम इसी पे निकलता है आजकल।
1: बहुत बहुत ही अच्छा है और आवाज सुन के आपकी और अच्छा लगता है। और सच अ नाइस इनिशिएटिव गजल का प्रोग्राम जो आप करते हैं।
2: थैंक यू सो मच अनुप्रीता मैम। हमारा फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, मैंने हेमंत सर से भी बात की है, उनकी भी पसंद की गजल मैंने नोट की है और अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। और आप मुझे ये बताइए मैम कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है और फिर उसकी कौन सी गजल आपको पसंद है और वो क्यों पसंद है?
1: ऑलराइट, तो वैसे तो बहुत सारे गजल सिंगर्स हैं जो मुझे पसंद हैं। हाँ, जैसे जगजीत सिंह हैं, गुलाम अली साहब हैं, और तलत अजीज साहब की गजलें मैं सुना करती थी, और आशा भोसले जी की गजलें। तो मैं अगर ऐसे नंबर वाइज लगाऊं तो मैं शायद आशा भोसले जी को फर्स्ट नंबर पे रखूंगी फेवरेट गजल। उनकी गाई हुई गजलें मुझे बहुत पसंद है। फिर वो फिल्म से भी हैं और उनकी एल्बम्स भी आई हुई हैं। राइट, तो वो पसंद है। उनकी एक एल्बम थी जो उन्होंने गुलाम अली साहब के साथ बनाई थी, उसका नाम था मिराज़े गजल।
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो वो 1983 में वो एल्बम रिलीज हुई थी, तो उसकी मुझे सारी गजलें पसंद है। बट उसमें से भी अगर हम नंबर करें तो फर्स्ट नंबर पे मैं वो वाली गजल बताऊंगी आपको, यू सजा चांद के छलका मेरे अंदाज का रंग, यू फजा महकी की बदला तेरे अंदाज का रंग। तो ये वाली गजल मुझे बहुत पसंद है। वो इसलिए भी पसंद है कि एक तो म्यूजिक उसका बहुत यूनिक है, कान में सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और उसमें जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं और आशा भोसले जी का जो उर्दू बोलने का तरीका है वो बहुत सुंदर है। हाँ, तो वो कानों में एकदम ऐसा मिठास घोलता है।
2: जो उनका तलफ्फुज है वो सुन के कोई कह ही नहीं सकता कि एक नॉन उर्दू स्पीकिंग खातून उसको गा रही हैं मराठी एक्सेंट में या किसी भी चीज में, कुछ भी ऐसा नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे कोई उर्दू स्पीकिंग मोहतरमा ही उनको गा रही है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ, हाँ
1: हाँ, दैट इज द ब्यूटी। और मतलब वो ऐसी एक सीखने वाली चीज है कि वो सुन सुन के आप उसको इमिटेट करें उस लेवल पे, तो हम पहुंच
2: गाना चाहेंगी, गुनगुनाएंगी?
1: मैं ट्राई करूंगी।
2: हाँ, करिए ना।

0: वाह ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर मैम. आपके साथ तो पूरी गजल का प्रोग्राम हम करेंगे. आज तो आपने हमको बता ये गजल की लाइन सुना के ना बस बस मुरीद बना दिया
1: थैंक यू सो मच
0: आपके.
1: फॉर योर काइंड वर्ड्स. थोड़ी सी कोशिश की मैंने तो,
0: नहीं,
1: एंड
0: इंस्टेंटली अगर आप इतना अच्छा गा सकती हैं तो जब आप म्यूजिक के साथ इसको गाएंगी तो फिर वो कितनी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी. आई एम रियली वेटिंग फॉर इट मैम. तो
1: डेफिनेट.
0: अब हम सुनते हैं आपकी पसंद की गजल, अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं. थैंक यू सो मच अनुप्रीता मैम, थैंक यू सो मच हमारे
1: थैंक यू
0: साथ
1: आरती
0: जुड़ने के
1: जी,
0: लिए.
1: थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस चांस. एंड डेफिनेटली वी वुड आई वुड लव टू हैव अ प्रोग्राम विथ यू. डेफिनेटली आई विल ट्राई फॉर इट. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सो मच.

0: वाह दोस्तों, हेमंत जी से बात करने के बाद जब उनकी शरीक हयात अनुप्रीता नेसरे जी से बात हुई तो संगीत का एक और हसीन रंग सामने आया। अनुप्रीता जी अपने कॉलेज के दिनों से ही आशा ताई की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि गैर उर्दू भाषी होते हुए भी आशा ताई जिस सफाई और नफासत से उर्दू लफ्जों का उच्चारण करती हैं वो बहुत इंस्पायरिंग है। एल्बम मेराज से उस्ताद गुलाम अली साहब के साथ गाई ये गजल फिर कुछ इस तरह चांद वाकई गायकी का एक अद्भुत नमूना है। अनुप्रीता जी, आपकी इस बेहद नफीस पसंद का दिल से शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ाते हैं अपना अगला कदम और लेते हैं हमारे प्रोग्राम की चौथी कॉल।
1: हेलो
2: हेलो डियर रमा।
1: हेलो आरती जी, कैसे हैं आप?
2: आप कैसी हो?
1: मैं बहुत बढ़िया।
2: रमा, हम गजल का फरमाइशी प्रोग्राम बना रहे हैं और मैं चाह रही थी कि मैं आपसे भी आपकी फरमाइश जानूं और उसको फिर हम रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए रमा कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
1: मेरे फेवरेट गजल सिंगर है जगजीत सिंह जी।
2: वेरी नाइस। क्यों पसंद है आपको इतने?
1: बस उनकी वॉइस की जो टोन है, द वे उनकी सिंगिंग की जो न्यूएंसेस है,
2: यस,
1: और द वे उनकी वर्सटाइलिटी जो है, वो सब मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं जो हमारे दिल में होती है बट हम कभी बोल नहीं पाते,
2: कह नहीं पाते। सही बात।
1: या सो

0: इसलिए
1: गजलें।
0: मुझे उनकी सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं।
1: तो कौन सी गजल आपको पसंद है उनकी?
0: अगर मेरी फरमाइश आप सच में प्ले करेंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू
1: क्यों
0: प्ले
1: नहीं,
0: प्यार का।
1: इसीलिए तो फोन किया है आपको, बताइए
0: हाँ,
1: ना।
0: तो प्यार का पहला खत
1: दिखने को वक्त
0: वक्त तो
1: तो
0: लगता
1: लगता
0: है,
1: है।
0: ये
1: बहुत
0: बहुत
1: सुंदर,
0: ही ब्यूटीफुल गजल
1: बहुत सुंदर
0: है
1: चॉइस है आपकी, बहुत सुंदर।
0: या
1: मेरे को भी बहुत पसंद है ये गजल। और आपको क्यों पसंद है इतनी ये गजल?
0: मतलब इस ये गजल से आई थिंक एवरी पर्सन हु इज इन लव कैन रिलेट टू इट।
1: वाह,
0: जैसे मतलब हम जब किसी से प्यार करना शुरू करते हैं, इन द सेंस वो जो इनिशियल हेजिटेशंस है और जो शाइनेस है या जो भी है, वो इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि हर चीज का जो वक्त लगता है, उस वक्त हमें जो एक्साइटमेंट एंग्जाइटीज होती हैं, सो उसको कैसे स्लो डाउन करके उस प्रोसेस को इतना ब्यूटीफुली उन्होंने
1: आई
0: बताया
1: नो,
0: है कि एंड इवन द एग्जाम्पल्स दैट ही हैज यूज्ड इन द सॉन्ग्स टू एक्सप्रेस द मीनिंग
1: योर
0: ऑफ द सॉन्ग इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुझे बहुत
1: चॉइस इज
0: पसंद है ये
1: एब्सोल्युटली
0: सॉन्ग।
1: गुड। या मुझे ये बताओ कि आप एक लाइन फटाफट गा दो। आपकी आवाज बहुत पसंद है मुझे।
0: ओह थैंक यू सो मच। सो प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है।
1: बहुत खूब। उस दिन आपका प्रोग्राम आ रहा था, मैं तो आपकी मुरीद हो गई आपकी आवाज की। यू हैव सच ए
0: थैंक यू,
1: ब्यूटिफुल वॉइस रमा। तो
0: थैंक यू सो मच।
1: चलिए।
0: आपको भी थैंक यू, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी प्लेइंग वन ऑफ द मोस्ट लाउड सॉन्ग
1: यस, क्यों नहीं
0: गजल्स,
1: क्यों
0: आई मीन
1: नहीं
0: या
1: क्यों नहीं।
0: थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच रमा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं हमारी रमा की खूबसूरत पसंद पर एक खूबसूरत सी गजल। थैंक यू रमा, थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच। या

बात है। माया नगरी मुंबई से हमारी बहुत ही आला दर्जे की सिंगर हमारी दोस्त रमा आनंद जी की पसंद ने

वाह, बेंगलोर से हमारी बेहद गुणी दोस्त वीना नायक की आवाज और उनकी ये पसंद सीधे दिल में उतर गई। वीना जी खुद एक बहुत बेहतरीन गायिका है और रेडियो एसएन पर हाल ही में उनका ब्रॉडकास्ट हुआ सिंगिंग शो, हम सब ने बहुत पसंद किया था जब उन्होंने अपनी सुरीली आवाज में इस गजल की एक लाइन गुनगुनाई।

दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिले में ही मिलता है, किंतु कड़कनाथ की इस ब्रीड को अब तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाने लगा है। कड़कनाथ मुर्गे की तासीर गर्म होती है तथा देश से तकरीबन सभी हिस्सों में इस मुर्गे की काफी मांग रहती है। यह तीन प्रजातियों में पाया जाता है, जिसमें पेंसिल्ड, गोल्डन और झेड ब्लैक शामिल होते हैं। झेड ब्लैक मुर्गे के पंख पूरे काले होते हैं तथा पेंसिल्ड प्रजाति के मुर्गे का आकार पेंसिल की तरह होता है। वहीं गोल्डन प्रजाति के मुर्गे के पंखों पर गोल्डन छींटे पड़े होते हैं। कड़कनाथ मुर्गों की प्रजाति में आने वाला सबसे महंगा मुर्गा है। इसका रंग, खून, पंजे और आंखें आदि सब कुछ काले रंग के ही हैं, इसलिए इसे काले चिकन या काले मांस के नाम से भी जाना जाता है। बाजार में इस मुर्गे की कीमत लगभग 1200 रुपये प्रति किलो से 1800 रुपये प्रति किलो तक है। अन्य मुर्गों के मुकाबले यह केवल 5 से 6 महीने के भीतर ही तैयार हो जाता है। कड़कनाथ मुर्गे चारे में बरसीम और चरी आदि खाते हैं, अतः इन्हें पालने में लागत कम लगती है और मुनाफा काफी ज्यादा होता है। अपनी कई खूबियों के कारण इस मुर्गे की सबसे अधिक मांग है। इसकी एक खास बात यह भी है कि यह अन्य मुर्गों की तुलना में इनमें वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिसे खाने से शरीर को नुकसान नहीं होता। कड़कनाथ मुर्गा मूल रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मिलता है और इसकी कीमत सामान्य मुर्गों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा भी बेहद ही ज्यादा पाई जाती है। साथ ही इसकी हड्डियां और मांस का कलर भी काला होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तो सालो किसान भाइयों, हव हमली कड़कनाथ मुर्गानी वातियो मारा सहयोगी भाई कमता डामोर देखी ढिल्ली बोली माँ।
1: तो किसान भाइयों, कड़कनाथ एवो कुकड़ू से जो कि आपड़ा झाबुआ जिला में पड़वा वालों से अने तीनी प्रदेश भर में अने देश भर में इन्होंने काफी डिमांड से अने ज्यादा डिमांड अने उत्पादन कम रहने का कारण इन्होंने ज्यादा इन्होंने कीमत मिले से। तो किसान भाइयों, इन्हान पालवा हारू एक सही तरीका थी इन्हें देखरेख करी पड़े अने इनो कालू मां अने पूरी दुनिया मां घणो ही कीमती अने घणो दुर्लभ अने कठिन मानी जाए से। तो किसान साथियों, हमने तक पूरा विश्व मां 25 से ज्यादा कुकड़ा नी प्रजातियों पाई जाए से। तीन मां काला मांस ना नाम थी इन्होंने कड़कनाथ ना जाने से। तो इनमां भारत ना कड़कनाथ ने अलावा चीन नी सिल्की अने इंडोनेशिया नी आयाम सेनिनी अने वियतनाम नी ओके नामनो कुकड़ो काफी प्रसिद्ध से। अने इना काला रंग नी मुख्य वजह थी फाइब्रोमिलेनोसिस नामनी एक अनुवांशिक गुण वालो रेसे अने इनमां मेलानिन पिगमेंट कड़कनाथ मांस हड्डी अने त्वचाना संचय थी थाय से। कड़कनाथ भारत नो एक पंजीकृत मुर्गानी एक नस्ल से अने तीना ने हाल ही में मध्य प्रदेश ने माहना हारू भौगोलिक संकेत GI टैग मळ्यो से। झाबुआ मध्य प्रदेश नी पहचान यू आहार को केवल झाबुआ में पाई जाने वाले कुकड़ा नी एक प्रजाति कड़कनाथ ना कारण पूरा देह में से। क्षेत्रीय भाषा में कड़कनाथ ने काला मासी ना नाम तो भी जाने जाए से, क्योंकि इहुनो मांस चोंस, कलंगी, जुबान अने पोग, नोक, सामड़ी इनी हगली काली रहे से अने इनो लोई भी कालो रहे से। तो किसान साथियों, क्योंकि तीने हारू मिलेनिन पिगमेंट नी ज्यादातर रेवाने कारण रहे से, इनमा माह मा प्रोटीन प्रचुर मात्रा मा अने वसा न्यूनतम मात्रा मा रहे से। तिनथी हृदय, डायबिटीज रोगियों हारू यो काफी उत्तम आहार से। इहुनो मा हवाद वालो अने आसानी थू पचवा वालो रहे से। इहुनी इनी विशेषता ने कारण बाजार मा इहुनी मांग काफी तेज रहे से अने काफी ऊंची दरी पर इनान ज्यादा कीमत मा वेसाई जाए से। कड़कनाथ ने तीन प्रजातियों रहे से। पहली प्रजाति से जेट अने बीजी से ब्लैक अने अगली प्रजाति पेंसिल्ड गोल्डन

हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर, और आइए स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से, रेडियो टंटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज की प्रोग्राम की कलाकारा हैं आस्था सिंह जी। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को आस्था जी की आवाज में, इस गीत से।

0: बहुत सुंदर गायकी। आस्था जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू करते हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं आस्था जी कि आपका जन्म स्थान क्या है और उसके बारे में कुछ खास बताइए।
1: नमस्कार, हेलो सबको, मेरा नाम आस्था है और हम उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर से हैं। कानपुर के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ ये हैं कि यहाँ पे चमड़े का बहुत अच्छा काम होता है। एक समय पे यहाँ पे बहुत सारी कपड़ा मिल भी थी जिसकी वजह से इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। और एक बहुत ही नई रोचक जानकारी ये है कि अभी एक बहुत नए सर्वे में कानपुर को वर्ल्ड में 11वें नंबर की सबसे खुश शहर का किताब मिला है। तो मुझे लगता है इसके पीछे एक वजह ये होगी कि यहाँ पे लोग बहुत मिलजुल के बड़े मस्त मौला और खुश दिल तरीके से रहते हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे कानपुर शहर को ग्लोबल लेवल पे इस तरीके का खिताब मिला है, तो बहुत ही खुशी हुई थी ये जानकर।
0: वाह, क्या बात है। तो आस्था जी, हमारे श्रोताओं को सुनवाते हैं आपकी ही आवाज का ये गीत।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर गीत। आस्था जी, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी आप कहाँ रहती हैं और क्या खास है उस जगह के बारे में?
1: अभी जॉब के सिलसिले में हम बैंगलोर में रह रहे हैं और बैंगलोर के बारे में रोचक जानकारी ये है कि ये कई वजहों से विख्यात है। पहली ये कि इसका मौसम बहुत ही अच्छा है इस शहर का। कभी भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं महसूस होगी।

0: दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। फैंटास्टिक सॉन्ग, बहुत ही सुंदर गीत। आस्था जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस तरह के प्रोफेशन में हैं और कब से हैं?
1: हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, तो हम उस हिसाब से इंजीनियर हैं, और हमारा प्रोफेशन प्रोडक्ट मैनेजर का है अभी। तो प्रोडक्ट मैनेजर एक तरह से जितने भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन पे या फेसबुक या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बारे में सारा डिसीजन लेना या उसमें क्या नया बनना चाहिए, किस तरीके के बदलाव आने चाहिए, ये सब जो निर्णय होता है वो एक प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट टीम लेती है। तो अभी हम एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं। हमें 6 साल हो गया शायद काम करते हुए। 2018 में हमने अपना बीटेक पूरा किया था, तो अब 6 साल से हम इस फील्ड में हैं।
0: जी, आइए दोस्तों सुनते हैं एक और गीत।

0: शानदार गीत। आस्था जी, अब ये बताएं कि गाने का शौक आपको कब से हुआ, कब से गा रही हैं आप?
1: गाने का शौक हमें लगता है बहुत बचपन से ही आ गया था, क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर मतलब बाबा बहुत अच्छा गाते थे, हमारे फादर भी बहुत अच्छा गाते हैं। उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली शास्त्रीय संगीत की, किंतु वो आवाज़ उनकी बहुत अच्छी है और सुर भी बहुत अच्छे हैं, तो उस लिहाज से शुरू से ही गाने का माहौल था घर पे। और हमने भरतनाट्यम सीखना शुरू किया था आई थिंक 6 साल की उम्र में, और हमारी बड़ी बहन शास्त्रीय संगीत सीख रही थी उस वक्त। तो फिर हमारे पेरेंट्स ने और हमारे बाबा दादी ने दोनों ही बच्चों को दोनों तरीके की शिक्षा देने का सोचा, तो 7 या 8 साल की उम्र से हमने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया था। तो तभी से हमें लगता है कि गाने का शौक तो था ही। हमारे घर में हमेशा रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, लता जी, इन सब के गाने बहुत बचपन से ही चलते थे, बजते थे और पसंद भी आते थे, तो अभी भी हम लोग का म्यूज़िकल टेस्ट उसी प्रकार का है।
0: जी हाँ जी हाँ दोस्तों, आपने सुना, तो आइए एक गीत भी सुनते हैं आस्था जी का।

जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे, यहाँ से लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी।

0: जी।
1: आस्था जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको संगीत में क्या पसंद है, किस तरह के गाने, किस तरह का संगीत पसंद है आपको?
0: हमें सभी प्रकार के गाने पसंद हैं। गजल्स बहुत पसंद है और शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत छोटी उम्र से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है। फिल्मी गानों में पुराने गाने ज़्यादा पसंद है, जैसे किशोर कुमार साहब, रफ़ी साहब, लता जी, आशा भोसले जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद एआर रहमान साहब का म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो उनकी जितनी भी फिल्मों के गाने होते हैं वो सभी बहुत अच्छे लगते हैं। हरिहरन साहब, कविता कृष्णमूर्ति जी, इन सब के फिल्मी गाने बहुत अच्छे लगते हैं
1: जी। तो लीजिए दोस्तों, एक गीत आस्था जी का।

0: रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज।
1: बहुत बढ़िया गीत, बहुत बढ़िया गायकी। आस्था जी, अब मैं आपसे एक थोड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा गायक कौन है और क्यों?
2: ऐसे तो हमें बहुत सारे गायक गायिकाएं पसंद हैं, जैसे आशा भोसले जी बहुत पसंद हैं, पर आजकल के गायकों में हमें सुनिधि चौहान की आवाज़ बहुत पसंद है। तो उनका एक गाना है चमेली फिल्म का, भागे रे मन, तो वो आपके लिए सुनाते हैं।

0: आस्था जी, आपका सबसे पसंद का गीत कौन सा है? जी हाँ, कौन सा गीत है जो आपको बेहद पसंद है और क्यों?
1: मेरा फेवरेट गाना है आज जाने की जिद ना करो, जो फरीदा खानम जी ने गाया था। और इसके पीछे की वजह यह है कि जब हमने कॉलेज ज्वाइन किया था तो उसके पहले साल में बहुत सारे अलग अलग क्लब्स के ऑडिशन होते थे, जैसे कि म्यूज़िक क्लब, डांस क्लब, नुक्कड़ नाटक वगैरह। तो उसमें म्यूज़िक क्लब के ऑडिशन में हमने ये गाना गाया था और इस गाने की वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ उस क्लब में। और बहुत ही अच्छे कुछ इवेंट्स हुए जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया उसी के बदौलत, और बहुत ही अच्छे कुछ दोस्त बने जो आज तक बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनसे बहुत अच्छी दोस्ती है आज भी। तो इस वजह से ये गाना बहुत करीब है दिल के, तो सुनाते हैं आपको।

0: दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ। आस्था जी, आपकी हॉबीज क्या हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। जब आप खाली वक्त होता है आपके पास तो आप क्या करना चाहती हैं उसमें?
1: हॉबीज में पहली तो म्यूजिक ही है सबसे ज्यादा। म्यूजिक से सराउंडेड और जो भी चीजें होती हैं वो पसंद हैं, जैसे कि कोई नया गाना अगर आया तो अगर अच्छा लगा तो कोशिश करते हैं कि उसको गाएं, और ना गा पाएं बहुत ज़्यादा तो कम से कम सुने, तो ये शौक है। इसके अलावा भरतनाट्यम सीखा है तो उसका भी शौक है। बहुत ज़्यादा रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं हम, लेकिन इंटरेस्ट है देखने में। तो सोशल मीडिया पे भी कभी अगर कोई शास्त्रीय संगीत और भरतनाट्यम के कोई आर्टिस्ट होते हैं तो उनके वीडियोज़ वगैरह देखना अच्छा लगता है। इसके अलावा घूमने का शौक है हमें, तो कोशिश करते हैं अगर किसी भी नई जगह जाएं, जैसे अभी बैंगलोर में है तो उसके आसपास की जगह जब छुट्टी मिले तो घूम के आए, देखें वहाँ के लोकल लोग, लोकल कल्चर कैसा है, लोकल खाना कैसा है। तो यही कुछ शौक है और कोशिश करते हैं कि ये शौक बरकरार रहे।
0: फैंटास्टिक। आइए दोस्तों, एक और गीत सुनते हैं आस्था जी का।

0: आस्था जी, थैंक यू सो मच। हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश है आपका?
1: सबसे पहले तो इस अपॉर्चुनिटी, इस मौके के लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने हमारे जैसे आर्टिस्ट को पहचाना, खोजा और आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम थोड़ी बहुत जो भी कला है उसको यहाँ प्रदर्शित कर पाएं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑडियंस के लिए मेरा ये मैसेज होगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को, इसमें आने वाले गायकों को, गायिकाओं को सुने। अगर अच्छा लग रहा है तो उन्हें आगे बढ़ाएं। खुद भी अगर कोई इस तरह की कला आप में है या आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर उसको परस्यू करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत भाग दौड़ वाला जीवन है, बहुत ही बिजी हो गया है, समय कम निकलता है, तो किसी भी प्रकार की अगर कला आप ले सकते हैं, उसको उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो वो आपके जीवन में बहुत बड़ा एक स्ट्रेस बस्टर का काम कर सकती है। तो उसको ज़रूर सीखें, कोशिश करें। आजकल ज़रूरी नहीं है कि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी पड़े। बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिससे कि आप अपनी ये कला को निखार सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़रूर रुचि रखें और ख़ास करके इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक या किसी भी प्रकार का डांस फॉर्म या कोई इंस्ट्रूमेंट यदि आप सुने तो और लोग जो शायद अब उतना नहीं प्ले कर रहे हैं उसको ध्यान में रखेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, तो उस तरीके से हमारा इंडियन जो एक कल्चर है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि आबाद रहेगा। तो उसके लिए कोशिश करें अगर हो पाए तो। बस यही एक मैसेज है, थैंक यू
0: भाई। वाह, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों सुनते हैं एक और गीत आस्था जी का।

0: तो दोस्तों ये थी आस्था सिंह जी, जिनकी गायकी, बेहतरीन गीत और संगीत ने हमें बहुत मोटिवेट किया, हमें बहुत प्रभावित किया। थैंक यू सो मच आस्था जी फॉर बीइंग विद अस।
1: मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए।

नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर, और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार।

0: आइए दोस्तों, आज के कलाकार के इस बहुत ही सौंधे सौंधे से बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, इस प्रोग्राम में आपको एक अलग तरह की खुशबू आएगी। ये प्रोग्राम है खास करके गजलों का, और आज हमारे साथ जो गजल गायक मौजूद हैं वो हैं राजीव पांडे साहब। राजीव पांडे साहब हमारे साथ पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, लेकिन हमें मौका मिला है उनसे दोबारा बात करने का, उनकी गायकी को दोबारा सुनने का एक अलग अंदाज में। तो फिर राजीव भाई का मैं स्वागत करते हुए उनका आभार प्रकट करता हूं, उनको शुक्रिया कहता हूं, और उनसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों को एक बार फिर से जरा उनकी याददाश्त तरोताजा हो जाए कि भला आप कौन हैं, कहाँ हैं, बताइए ना जरा।
1: सर मैं राजीव पांडे, मेरा नाम राजीव पांडे है। हाँ। मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है, एंड जबलपुर बहुत फेमस है भेड़ा घाट के लिए, भेड़ा घाट फॉर मार्बल रॉक्स। जबलपुर फेमस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज के लिए, अराउंड 6-7 फैक्ट्रीज हैं जबलपुर में। एंड मैंने अपना एजुकेशन जबलपुर से ही किया, मैंने BSc विथ मैथ्स किया, उसके बाद मैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में काम किया हूँ, फ्रॉम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टू रीजनल मैनेजर, कुछ 18-19 साल। उसके बाद सर मैं फार्मास्यूटिकल से इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया, मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में था कुछ 10 साल।
0: ओके।
1: और उसके बाद मेरी वाइफ रत्ना पांडे जी का एक अपना स्कूल है, एक किंडरगार्टन स्कूल है जो वो कि 23-24 साल से चला रहे हैं। तो पिछले 10 सालों से मैं उनके साथ ही उनके काम में सम्मिलित हुआ, उन्हीं के काम को साथ में मिलके हम आगे बढ़ा रहे हैं। सो शी इज माई बॉस इन दिस न्यू बिजनेस, न्यू वर्क। हमारे स्कूल के काम में वो मेरी बॉस है, बिकॉज मैं तो फार्मास्यूटिकल और इंश्योरेंस वाला आदमी था, फिर एजुकेशन फील्ड में आ गया। वैसे एजुकेशन में मेरे मदर फादर भी हुआ करते थे। मेरे फादर रिटायर्ड हुए थे एज अ प्रिंसिपल, मेरी मदर भी टीचर थी, तो हमारी फैमिली में एजुकेशन का ही बहुत वो था। से मेरी वाइफ ने फॉलो किया उसको, और अब मैं उनके साथ कर रहा हूँ।
0: बहुत खूब।
1: मेरे मेरे दो बच्चे हैं, मेरी डॉटर मुक्शदा एंड मानस, माय सन, बोथ आर इन IT इंडस्ट्री। तो ऐसा है सर।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों एक बार फिर से हमारी याददाश्त वापस से तरोताजा हुई कि राजीव पांडे जी कौन है। तो राजीव भाई चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि गजलों की तरफ आपका झुकाव कैसे हो गया?
1: जी सर, जैसे कि पिछली बार भी मैंने जिक्र किया था, मेरे फादर बहुत अच्छे सिंगर थे, इज नो मोर नाउ, अब है नहीं वो। तो मैंने मुकेश गाना सीखा उनसे, और उन्हीं ने मुझे कुछ, मैं जब 18 साल का था उस समय उन्होंने मुझे एक टेप रिकॉर्डर ला के दिया, और वो टेप रिकॉर्डर के साथ एक कैसेट था, वो कैसेट था अनफॉरगेटेबल्स का।
0: अच्छा जी, अच्छा जी।
1: जगजीत जी का कैसेट था अनफॉरगेटेबल्स का। गायन का शौक तो था, फादर को सुनते सुनते मैंने सीखा हुआ था
0: जी।
1: बट जब मैंने वो कैसेट सुना तो मेरी म्यूजिक के प्रति एक टोटल, जो कहना चाहिए, लगाव इतना ज्यादा बढ़ गया, तो वहां से ही मेरा गजलों की तरफ झुकाव हुआ। फिर जगजीत सिंह के जितने एल्बम हुआ करते थे सभी एक एक लाके हम सुना करते थे। फिर मेरी जब शादी हुई तो मेरी वाइफ रत्ना को भी सेम शौक था जगजीत सिंह को सुनने का, तो हम दोनों एक से हो गए म्यूजिक के शौकीन, और वो भी जगजीत सिंह के। तो फिर हर प्रकार के उनके, जब भी उनका कोई एल्बम आने को होता था तो हम लोग पहले से रेडी होते थे कि एल्बम लॉन्च हुआ है और उसी दिन हमको वो एल्बम लाके फिर सुनना है। और ऐसे सर म्यूजिक के प्रति, गजल के प्रति इतना लगाव हुआ कि एक लंबा समय गजलें सुनते सुनते निकाला। फिर जगजीत सिंह जी के साथ फिर गुलाम अली साहब को भी सुनने लगे, मेहंदी हसन खान साहब को भी बहुत सुना, और फिर गाने का जुनून तो था ही, पहले हिंदी का मतलब फिल्मी गाने गाया करते थे, साथ में गजलों को भी गाना स्टार्ट कर दिया। पिछले कुछ 4-5 साल से जब से सर मैं स्टार मेकर से जुड़ा और बहुत नई फील्ड के, इस म्यूजिक फील्ड के बहुत लोग मिले, तो मैं गजलें और ज्यादा गाने लगा।
0: बात खूब।
1: बहुत खासकर जगजीत सिंह साहब को। जी
0: जी। तो चलिए दोस्तों, हमने ये जाना कि गजलों की तरफ राजीव पांडे जी का झुकाव कैसे हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम की और इन गजलों को सुनते हैं जो राजीव जी ने हमारे लिए तैयार की। आइए, पेश खिदमत है।

0: तो राजीव भाई, बहुत ही खूबसूरत गायकी और गजलों का एक अलग माहौल होता है, एक अलग तरीका होता है। हमें थोड़ा सा बताइए, आपने बताया मेहंदी हसन साहब को सुना आपने, जगजीत सिंह साहब की आवाज की वजह से आप गजलों के मुरीद हो गए, गुलाम अली ऑफ कोर्स कहने की ही कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा समझाइए, खास करके मैं जानना चाहूंगा गजलों के कितने तरीके की गजलें होती हैं, मतलब कुछ टाइप्स होते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, या मतलब जैसे कि अगर हम हिंदी के गानों की बात करें तो एक रोमांटिक होता है, मतलब कोई उदासी वाला गाना होता है, कोई जॉली नेचर का गाना होता है, कोई मौसम पर होता है, तो क्या गजलों में भी इस तरीके के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं?
1: सर वैसे मैं बहुत ज्यादा ये चीज समझने में डीप में नहीं गया, बट हाँ जहां तक गजल रोमांस को लेके ही गजल है
0: जी,
1: और गजल का रूप ही जो बना वो प्यार मोहब्बत से रिलेटेड है। फिर साथ में जगजीत सिंह साहब ने कुछ गजलें गाई जिसको कि हमारे रोजमर्रा के जीवन से रिलेटेड भी, जो बहुत अच्छे शायरों ने जो गजल लिखी उनको भी गाया उन्होंने। पर जहां तक मेरा मानना है गजल में एक संजीदगी होती है, एक बड़ा ठहराव होता है, एक बड़ा सुकून मिलता है। रही बात तो ये मेन तो रोमांस और प्यार से रिलेटेड ही है जहां तक मैं समझता हूं
0: जी। लेकिन कई बार राजीव भाई मुझे ऐसा महसूस हुआ गजलें सुनते हुए कि ज्यादातर, मतलब ऑफ कोर्स प्यार मोहब्बत रोमांस ही है उसमें, बट ज्यादातर मुझे लगा कि बहुत पेनफुल हैं गजलें, ज्यादातर दिल टूटे हुए लोगों की, दारू का एक ग्लास हाथ में लेकर बैठे रोते हुए गजलों को गाना
1: जी जी जी,
0: तो
1: जी,
0: वो
1: जी,
0: बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई, इसीलिए मैंने सोचा कि क्या मतलब गजलें क्या सिर्फ कुछ दुखी इंसान होते हैं उन्हीं की पसंद है, या वही गाते हैं, या वो शायर भी दिल टूटे हुए होते हैं वही लिखते हैं, मतलब वाय गजल इतनी हमेशा दुखी क्यों होती है?
1: सर ये बात तो कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि गजल हर व्यक्ति के जो म्यूजिक पसंद करने वाले होते हैं, जरूरी नहीं कि सभी के पसंद की चीज हो गजल
0: जी,
1: क्योंकि ये बात तो पक्की है कि गजल, जैसा आपने बोला कि हाँ जैसे शराब के पे बहुत गजल बनी है, पीने वालों पर, पिलाने वालों पर बहुत गजल बनी है
0: जी,
1: है टूटे हुए दिल की बहुत गजल बनी है। तो जहां तक मुझे भी ऐसा लगता है जब गजल सुनते हैं और गजल गाते हैं कि गजल कोई वो वाला गायन नहीं है जिसको कि सेलिब्रेशन वाली चीज उसमें आए है, या एक वैसा माहौल हो कि बहुत हंसी खुशी वाला माहौल हो वहां गजल चल रही हो। गजल थोड़ा सा जैसे हम बोलते हैं मुकेश साहब के गाने जो थे वो थोड़ा दर्द भरे हुआ करते थे
0: जी,
1: है तो वैसा ही यहाँ पर गजल में भी वो दर्द तो है, जिंदगी का जो दर्द है वो उभर के निकल के आता है गजलों में, शब्दों में, धुनों में, उसकी गायकी में, सभी जगह
0: जी। तो ये सवाल दरअसल

मेरे दिमाग में लगातार उठता रहा है दोस्तों, आप सभी लोग सुन रहे हैं, राजीव पांडे साहब ने अपनी बात रखी है, बिल्कुल सही है। आपके क्या विचार हैं जरा मैसेज करके हम सब लोगों को बताइए ना। चलिए तब तक आगे बढ़ते हुए इन प्यारी सी गजलों का आनंद उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं, डूबते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। इन्हें पेश करता हूं ये गजलें।

0: बहुत खूब, बहुत ही बहुत खूब। दरअसल राजीव भाई, पिछली ही बात जो चल रही थी उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं लूंगा उसको, क्योंकि ठीक है हर एक का मिजाज अलग अलग होता है। कोई दरअसल कुछ दिनों पहले मैं एक फ्रेंड के यहाँ गया था और उनके बेटे का बर्थडे था और बालकनी पर बैठ के उन्होंने केक वेक किया हुआ था, अरेंज किया हुआ था, बारबेक्यू वगैरह किया हुआ था। तो वहाँ पर बैठे और उनके बर्थडे, उनके बेटे के बर्थडे का वो सेलिब्रेट करना था और उन्होंने अपने टैबलेट के ऊपर गजलें लगा दी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बड़ा अटपटा सा लगा कि ये मतलब क्या, मतलब ये ओकेजन क्या है और वो सुना क्या रहे हैं। तो कुछ और वो बड़े, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था साहब की, क्या माहौल बना दिया मैंने। मुझे बहुत ही अटपटा लगा, उनको टोकना नहीं चाहता था, उन्हीं के घर पे उन्हीं के यहाँ इन्वाइटेड था मैं, तो मैंने उनसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा यार भाई डिस्टर्ब हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, इसको बंद कर दो यार। लेकिन बहुत अटपटा सा लगा कि लोगों को समझ में नहीं आती है बात की कि किस ओकेजन पे क्या करना चाहिए। चलिए ये उनकी अपनी सोच होगी, कोई बात नहीं। आप यह बात आपकी गजलों की हो रही है, तो अगर स्पेसिफिक बात करें, आपने कहा आप मेहदी हसन, गुलाम अली साहब, जगजीत जी, है ना, इनको आपने ज्यादा सुना, इसके अलावा भी कोई और कोई गजल गायक हो जिनकी गायकी ने आपको बहुत बहुत इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो?
1: सर जैसे कि मुकेश जी की भी जो प्राइवेट गजल्स थी,
0: जी हाँ,
1: जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है, मैं अपने फादर से सुना करता था, चांद आहें भरेगा फूर दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। तो मुकेश साहब की बहुत सी प्राइवेट गजल्स थी
0: जी,
1: वो भी वो मैं सुना करता था अपने फादर से, फिर मैं खुद भी गाता था, अभी भी गाता हूँ। तो हमारे इवन रफी साहब ने भी प्राइवेट गजल्स गाई हुई है। अनूप जलोटा साहब जब शुरू में अपनी गायकी स्टार्ट किया उन्होंने, तो उनका एक गजल का एल्बम निकला था, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। फिर इवन तलत अजीत साहब की गजल्स बहुत अच्छी हैं, फिल्मों में उनने गजल्स बहुत अच्छी गाई हुई है। हरिहरन साहब बहुत अच्छे गजल के सिंगर हैं। सो ऐसा तो सभी गायकों ने गजल्स गाई हैं, बट ये जगजीत सिंह जी हुए जिनने की गजल को स्पेशली हमारे हिंदुस्तान में आम लोगों तक पहुंचाया। अदरवाइज गजल जो उर्दू पोएट्री है वो सबके समझ की बात नहीं हुआ करती थी
0: जी।
1: हम खान साहब को पहले सुनते थे तो बहुत से अल्फाज उनके हमें इस समझ से परे होते थे
0: जी,
1: बट हम उनको गाने के समय उच्चारण करने की कोशिश करते थे। फिर जगजीत जी जब गजलों को लेके आए तो उनने इसको थोड़ा सा काफी कुछ हमारे लिए इजी किया
0: जी।
1: पहले पहले गायकी भी गजल की बड़ी टफ हुआ करती थी, मोस्टली क्लासिकल हुआ करता था, आठ आठ नौ नौ मिनट की गजल हुआ करती थी।
0: हाँ।
1: और बहुत ज्यादा आपको आपकी गायकी, आपके सुर पक्के होने चाहिए थे, क्योंकि बहुत बीच बीच में आलाप लेना पड़ता था, बहुत सरगम की जरूरत पड़ती थी। फिर जब जगजीत जी इसको लेके आए तो गजल्स की टाइमिंग भी कम हुई, कुछ 5-6 मिनट्स की गजल होने लगी, थोड़ा इजी गोइंग हो गई उनको गाने में। तो देखा जाए गजल का प्रॉपर उसका प्रचार जो हुआ, जो हम आप सब समझ पाए, वो जगजीत जी के थ्रू मुझे समझ में आता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने साहब, बिल्कुल सही कहा। जब आपने सही फरमाया, जिस वक्त मैंने गजलों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया था, उस वक्त जगजीत साहब तो ऑफकोर्स आ ही चुके थे, बट मेरा झुकाव थोड़ा सा पंकज उदास की तरफ ज्यादा था, क्योंकि कुछ ऐसा लगा कि पंकज उदास फिल्मों के गानों की तरह गजल को गा रहे हैं। जो खास करके वो चिट्ठी आइए चिट्ठी आइए का जो शुरू हुआ था, तो उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था। उसके बाद ऑफ कोर्स चंदन दास वाज देयर, तो वो फिल्मों के, है ना, तो वो फिल्मों के गानों की तरह गजलों को गाया, जगजीत जी ने भी वैसे ही गाया, तो वो आम आदमी की पहुंच में गजलें पहुंची।
1: एक कपल और था, राजेंद्र मेहता, नीना मेहता, वो भी गजल ही गाया करते थे।
0: जी जी जी जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कौन कौन गजल गायक हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर गजल गायकी को एक रूप दिया, एक शक्ल दी। चलिए अभी तो राजीव जी के गाए हुए इन प्यारी सी गजलों का लुत्फ उठाएं, और फिर वापस आए राजीव जी से बात करने के लिए।

0: बहुत खूब, अमेजिंग सिंगिंग, क्या बात है राजीव भाई। ठीक है, आपने बात करी गुलाम अली साहब की, मेहंदी आई हसन साहब की, जगजीत द गजल किंग, गजल सम्राट उनको कहा जाता है, हो गया। आज की डेट में जो गजल गायकी है, आप अगर गजल गायक हैं तो जाहिर सी बात है आज की डेट की भी कुछ गजल गायकी कहीं ना कहीं आपको सुनाई पड़ जाती होगी, और उस जमाने की, जिस जमाने में जगजीत जी थे, क्या फर्क महसूस करते हैं आप?
1: सर ऐसा अभी तो बहुत ज्यादा गजल गायक है नहीं है, ऐसे समझ में नहीं आता, दिखते नहीं है, और जो भी है तो थोड़ा सा वो एक जो सोज या संजीदगी जो गजल गायकी में हुआ करती थी पहले, वो अभी ऐसी नहीं दिखती है। और शायद मैंने नए गजल गायकों पे बहुत ध्यान भी नहीं दिया, और टू बी फ्रैंक की उनको ज्यादा कुछ गाने की कोशिश नहीं की। जगजीत सिंह में ही उलझे रहे हैं जब से हमने गजल गाना सीखा, और अभी भी उनके साथ ही, वो तो नहीं रहे बट उनकी गजलें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, और हम अभी भी रोज एक दो गजल उनकी गाते हैं, कोशिश करते हैं कुछ रिकॉर्डिंग की जाए, बहुत बार रिपीटिशन हो जाता है, तो यही है
0: बात।
1: तो नए गजल गायकों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है जी।
0: बात खूब। तो चलिए दोस्तों, अभी हम वापस आते हैं राजीव जी के पास इसी बात को जरा सा और आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तब तक गजलों का भी लुत्फ साथ साथ उठाते चले।
2: तेरे खुशबू में बसे खत

0: बहुत खूब। तो राजीव भाई, जैसे बॉलीवुड सिंगिंग या गीतों की बात कर लें तो किशोर कुमार साहब, लता मंगेशकर जी, और गजलों में बात कर लें तो जगजीत, बस खत्म। इसके अलावा मतलब हम इन तीन चार लोगों से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, तो क्या ऐसा कह सकते हैं? वैसे मुझे ऐसा कहने के लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगा, सभी लोगों से माफी चाहूंगा कि बस संगीत खत्म हो गया, अब और न तो कोई गायक है, न तो कोई लेखक है, न कोई गाने वाले हैं, कोई जगजीत नहीं, कोई मन्ना डे नहीं, कोई गुलाम अली नहीं, बस। आपको क्या लगता है, क्या हो रहा है सर?
1: सर, कहना तो आपका एक प्रकार से सही है, बट अभी कुछ नए नाम सुनने में आ रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा सुना नहीं है, एग्जैक्टली नाम भी याद नहीं है, बट हाँ, जहां तक गजल का एक दौर हो वाला था वो डेफिनेटली कम हुआ है, क्योंकि अभी भी हम गजल सुनने की बात करें या जो गजल के सुनने वाले और शौकीन लोग हैं वो भी उसी दौर की बात करते हैं।
0: जी जी,
1: अभी भी जिस घर में या जहां भी यदि गजल सुनने वाले हैं तो आपको गजल इन्हीं लोगों की सुनाई पड़ेगी। आप देखिए, गुलजार साहब ने बहुत गजलें लिखी और उनने और इवन फिल्मों में भी बहुत गजलें हुई। लता आशा जी ने बहुत गजलें गाई, इवन सभी फिल्मी गायकों ने गजलें गाई, सभी लेखकों ने जो लिरिक्स राइटर थे उनने गजलें लिखी। गुलजार साहब हिंदी फिल्मों में गीत लिखते थे और शायद जगजीत सिंह साहब के साथ उनके गजल एल्बम बहुत हिट हुए।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही।
1: ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है कि अभी के दौर में नए गजल गायक हरिहरन साहब हैं जो कि अभी भी गजल गाते हैं।
0: जी हाँ,
1: हैं। बाकी ऐसे नए लोगों का तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आता अभी।
0: बिल्कुल सही फरमाया। ये विचार करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है दोस्तों, क्या गजलों का दौर बस हो गया, चला गया, या हम इसमें कुछ नई जान फूंक सकते हैं? कुछ विचार करने की जरूरत है दोस्तों, क्या फ्यूचर है गजलों का? चलिए आगे बढ़ते हुए ये गजल पेश करता हूँ राजीव जी की आवाज में।

0: बहुत खूब, बिल्कुल दिल से दिल की बातें हुई हैं गज़लों के बारे में, गज़लों के जो गज़लें हो के गईं, जो गज़ल गायक रहे, जगजीत साहब आपने, अनूप जलोटा साहब का भी नाम लिया, मेहंदी हसन साहब का, पंकज उदास, चंदन दास, कई सारे गज़ल गायकों के बारे में बात हुई और आज की डेट में गज़लों का क्या भविष्य है वो भी। तो जितने भी सुनने वाले हैं राजीव जी, इस वक्त आपको जो सुन रहे हैं, आपकी गज़लें सुन रहे हैं, आप उनसे क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या बात करना चाहेंगे उनसे, थोड़ा सा बात कीजिए ना उनसे।
1: हाँ जी, मैं अपने सुनने वालों को, हमारे साथियों को जो जिनको म्यूजिक का इंटरेस्ट है, और तो गज़ल एक ऐसी विधा है, एक ऐसा अलग प्रारूप है सिंगिंग का, म्यूजिक का, जो कि एक बहुत सुकून देता है हमको, एक बहुत भाव प्रवणता देता है हमको। शायद हम बहुत बार यदि कभी बहुत विचलित होते हैं मानसिक रूप से कुछ, तो यदि हम को गज़ल पसंद है और हम यदि गज़ल सुनते हैं तो हमको बहुत सुकून मिलता है। तो गज़ल एक ऐसा संगीत है, ऐसे उसके बोल ऐसे होते हैं, उसकी लिरिक्स ऐसे होते हैं कि जो हमको एक बहुत चेहरा और बहुत सुकून देते हैं। तो जो गज़ल सुनने वाले हैं वो अपना ये गज़ल को सुनना जारी रखें, और मैं तो चाहूँगा कि नए गज़ल सिंगर आए जो कि हमारे गज़ल के इंटरेस्ट को कंटिन्यू बना रहे, हमारा हमारे नए गज़ल गायकों के साथ तो बहुत अच्छा होगा।
0: बिल्कुल सही फरमाया सर आपने, इसके ऊपर गौर फरमाने की ज़रूरत है, हमें कुछ नए गज़ल गायकों को ढूंढना होगा, कुछ नए गज़ल लेखकों को भी ढूंढना होगा। बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने आज राजीव पांडे जी से गाई हुई ये प्यारी सी गज़लें सुनी और उनके दिल की बातें भी हमने सुनी, क्या वो महसूस करते हैं गज़लों के बारे में। राजीव पांडे साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने शिरकत करी हमारे।
1: थैंक यू वेरी मच समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू।

तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में। नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः। आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। एंड द गेस्ट वी हैव टुडे टू डिस्कस स्पिरिचुअलिटी एंड टू लर्न अबाउट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड इट्स प्रैक्टिसेस, वी हैव ए वी जयरमन सर। सो आगे बढ़ते हुए मैं बस उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं, भला वो कहाँ हैं, क्या करते हैं, कौन है वो। सो जयरमन सर, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस ब्यूटिफुल लवली मॉर्निंग एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टॉक टू अवर लिसनर्स।
1: या आई एम जयरमन फ्रॉम बेंगलोर। सो आई ओरिजिनली आई वॉज I belong to Bombay during my school and college days, and then I completed my engineering in Bombay and started my career from Tata Electric, and then moved on to Middle East for my further career. And I would stay in Middle East, Saudi, Bahrain, UAE, Qatar, Muscat. Ultimately, from Muscat, I retired and then came and settled in Bangalore. So, but after my retirement, I chose another career. That is, I pursued medical alternate therapy in acupuncture and acupressure. I took